0: परेशानी मान लिया और उसे हल करने की कोशिश करने लगे। किसी ने सूत्र की सत्यता जानने की कोशिश ही नहीं की। अपने भावी उत्तराधिकारी की तार्किक बुद्धि परखने के लिए राजा ने ऐसी शर्त रखी थी।
1: श्रोताओं, विचार बिंदु कार्यक्रम में आज का विषय था मन की जीती जीत। स्वर अरुण पांडे का था। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है बरसात के मौसम में होने वाली समसामयिक बीमारियां और होम्योपैथिक उपचार। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता।
2: मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित बीमारियों की बात करें, जिसमें कॉमन कोल्ड है, कोराइजा है, कफ है, इन्फ्लुएंजा है, सोर थ्रोट है, टॉन्सिलाइटिस है, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम आती है, वायरल फीवर है, इन सब में जो होता है गले में दर्द, बुखार, नाक से पानी आना, छींक आना, जुखाम होना, इस तरीके की मलेज, बहुत ही हरारत से रहना, सुस्त रहना, इस तरीके की दिक्कतें आती रहती हैं। और इसी के साथ साथ टॉन्सिलाइटिस भी कई बार हो जाता है, तो गले में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसमें टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। इसके आगे कई बार कंडीशन ऐसी भी होती है कि वो इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए नीचे तक चला जाता है लंग्स तक, और उसमें निमोनिया डेवलप हो जाता है। निमोनिया में क्या होता है कि जो आपका लंग्स होता है उसके लंग्स के लोब को भी वो इन्फेक्टेड कर देता है, वो इन्फेक्शन वहाँ तक वायरस या बैक्टीरिया पहुँच जाता है और उसको कंसोलिडेट कर देता है उस एरिया को इन्फेक्शन से। उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत, घड़घड़ाहट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और आपको जो सर्दी जुकाम बुखार वाले जो सिम्टम है वो कॉमन आते हैं। ये आपके एयरबॉर्न डिजीज वाले संबंधित वाले कंडीशन आती है। दूसरी जो सबसे बड़े कॉमन जो इन बीमारियों में इसी बरसात में होता है वो पेट से संबंधित या दूषित जल या खाने से, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री और वॉमिटिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इसके लिए इसमें क्या होता है, जनरली आपको या तो उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, जो बार बार पानी की प्यास लग रही है, तास लग रही है, इसकी कंडीशन से मैं लोगों को विशेषकर ध्यान देना चाहूँगा डिहाइड्रेशन। ये जो सर्दी, ये आपका उल्टी दस्त और इस तरीके की गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन या टाइफाइड की वजह से क्या होता है कि आपको हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, आपके शरीर में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से आपका हाइड्रेशन कम हो जाता है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। इसकी वजह से आप हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, कभी कभी इस तरह की कंडीशन में आपकी डेथ तक हो सकती है। तो इसलिए इस कंडीशन में जरूरी है कि आप एक तो पानी जो है साफ स्वच्छ पहने और पिए और साथ में ORS का घोल या नींबू चीनी नमक पानी का साथ में घोल लेते रहें। कई बार इस कंडीशन में पेट से संबंधित कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, क्योंकि हम खाने में जो है बहुत तेल घी मसाले वाली चीज़ लेते हैं और वो इस समय पचता नहीं है, तो उसकी वजह से हमको कब्ज की बीमारी भी हो जाती है, मोशन कई दिन तक क्लियर नहीं रहता। अगर हम बात करें मच्छर जनित बीमारियों में, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इन तीनों में जो लक्षण होते हैं वो कॉमन ही होते हैं। एक काफ़ी कुछ कि जो उसमें फीवर काफ़ी तेज आएगा, जाड़ा देके बुखार आएगा और उसके साथ साथ एक क्लॉकवाइज एक कंडीशन पे 24 घंटे या 18 घंटे या 16 घंटे इस तरीके के रोटेशन पे उस तरीके का बुखार आता रहता है। कई बार उसमें डेंगू की तरह सिम्टम आने की वजह से हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, लगातार आपको बुखार आता रहता है और टेम्परेचर 103.4-5 तक भी पहुँच जाता है। आपको हेमरेजिक कंडीशन भी कई बार आ जाता है, आपको स्पॉट्स उस पर मिलेंगे स्किन के ऊपर, वो छोटे छोटे स्पॉट्स जो होते हैं उसमें ब्लड आपको कैपिलरीज में वो बह जाता है और उसकी वजह से आपको प्लेटलेट की कमी की वजह से ये होता है, इस तरह की दिक्कत होती है। तीसरी चीज चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें जो आपको सर्दी जुकाम बुखार वाले सिम्टम तो है, सबसे बड़ी बात इसमें तो ये ज्वाइंट्स को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है। इसको आम भाषा में, बनारस की भाषा में हम लोगों को पब्लिक आके बोलती है लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार में क्या हो रहा है कि मैं इसलिए आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि अब चिकनगुनिया सब शायद न पकड़ पाए लेकिन लंगड़ा बुखार से शायद समझ जाए, क्योंकि पिछला जो अभी सीजन गुजरा है उसमें हर बनारस का बंदे ने इस अपने और अपने परिवार में किसी न किसी को ग्रसित देखा लंगड़ा बुखार से, और इवन उनको तो जो कष्ट हुआ ही हुआ, हम डॉक्टर्स को भी इतना पेन हुआ उसको कवर करने में, आज तक हम उसको फिजियोथेरेपी और सिकाई और इस तरीके की चीज़ों से आज तक उसको कवर कर रहे हैं और अभी तक कवर नहीं कर पाए। कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है। उसके अलावा स्किन से संबंधित डिजीजेज जो होती है इनमें, क्योंकि स्किन में क्या होता है ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हम खुले कपड़े वगैरह नहीं पहनते, भीगे बदन रहते हैं, गीले बदन रहते हैं, उसकी वजह से घमोरियाँ खूब होती हैं, उसमें क्या होता, छोटे छोटे रैसेज होते हैं और उसके खुजली बहुत ज़्यादा होती रहती है, पानी भी कई बार आते रहते हैं। खुजली की एक जनरल सी बीमारी स्कैब

0: भी होती है, वो हो जाती है अर्टिकेरिया, जिसे आम भाषा में पित्ती उछलना बोलते हैं, कि लाल लाल उसमें चकत्ते से पड़ जाते हैं और खुजली काफ़ी होती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है इस स्किन से संबंधित अगर हम बात करें तो इस ह्यूमिडिटी में टीनिया, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, दाद बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा कष्टकारी हो रहा है पेशेंट्स के लिए। महीनों सालों तक परेशान हो रहे हैं, इवन डॉक्टर्स भी दवा दे दे के, एक एक डोज दे दे के तीन तीन छः छः महीने खिला खिला के भी कवर करना मुश्किल हो रहा है। इसमें आप सबसे ज़्यादा इसमें ग्रसित होने के चांसेस रहते हैं। सफाई का विशेष इसमें ध्यान रखें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में बरसात के मौसम में समसामयिक बीमारियां और होम्योपैथिक उपचार विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

बड़ी चतुराई से मंथरानी रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्यकुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बारगी सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मन गणंत कहानियां सुनाकर मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामिनी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहां रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें ये भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी आंख फड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वो मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की कड़ी के गायक कलाकार थे ए हरिहरन और साथी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी, जिसके अंतर्गत हम आपको देंगे दिन भर के कार्यक्रमों की जानकारी। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन पेश किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे एवं दिन में 12:30 पर कलाकार होंगी डॉक्टर रागिनी सरना। अंग्रेजी कार्यक्रम में शाम 7 बजे पॉपुलेशन ग्रोथ अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी विषय पर प्रोफेसर अलका सिंह से आकांक्षा सिंह की बातचीत सुनवाई जाएगी। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई खरीफ में सब्जियों का हानिकारक कीटों से बचाव विषय पर डॉक्टर कुलदीप सिंह से बातचीत के अलावा आप सुनेंगे देवता दीन सरोज के गाए लोकगीत। किसान भाई इस कार्यक्रम में अपने कृषि जगत कार्यक्रम में लोक संगीत के अलावा देवता दीन सरोज के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं। हमारे अन्य लोक संगीत के कार्यक्रमों में समय 9:50 और दिन में 1:45 का। युवाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता शाम 5:15 पर आज की बात मार्गदर्शन यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना और फिल्म संगीत सुनेंगे। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का प्रसारण समय दिन में 2:30 का होगा। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें दिन में 1:15 पर अन्य कार्यक्रमों के अलावा गीत संगीत का भी आनंद उठा सकती हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:45 पर एकल तबला वादन आप सुनेंगे। कलाकार होंगे पंडित शारदा सहाय। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर आप सुन सकते हैं सितार वादन, गिटार वादन, माफ कीजिएगा, प्रातः 7:31 पर आप सुन सकते हैं गिटार वादन। कलाकार होंगे निर्मल सैनी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12 बजे से। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस व्हाट्सएप पर आधारित आप सुनेंगे सुबह 11 बजे से। झनकार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से आप सुन सकते हैं। फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम मधुरिमा आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर। और गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 7 बजे से। श्रोतम हम आपको याद दिला दें दिन में 12:30 पर और रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में डॉक्टर रागिनी सरना कलाकार होंगी। सुबह 9:50 पर, दिन में 1:45 पर और कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर देवता दीन सरोज के गाए लोकगीत का आनंद आप उठा सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता शाम 5:15 पर आज की बात मार्गदर्शन यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना और फिल्म संगीत सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुन सकते हैं गिटार वादन। कलाकार होंगे निर्मल सैनी। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले हमारे केंद्र से प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा. अथ वार्ताः. भारत इण्डोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढाह्वानं कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति. जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य संसदं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गम् अनुसरति न तु विस्तारवादस्य.
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास. आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है.
0: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्. तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्तां कृतवान्. उभय नेतृभ्याम् परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्. श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इण्डोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्ताङ्ग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता. शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति. मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति. नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति. डॉक्टर जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्. यात्रावधौ डॉक्टर जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्. असौ उपप्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्. एतासु सभासु विदेश मंत्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्. प्रधानमंत्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य संभाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमंत्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता. प्रधानमन्त्रिणः प्रधान सचिवस्य डॉक्टर पीके मिश्र वर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता. अस्यां सभायां पञ्चदशतोप्यधिकानां मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्. फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैंड देशः वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूटआउट इत्येतस्यां क्रीडायां कोलंबिया देशं 4-3 इति

0: दलेन पराजित्य चतुःपञ्चाशदधिक ऊनविंशति शततमात् वर्षात् प्रथमवारं फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: उससे अप्पा
1: आ गई है बनारसी कुड़ी। सो बनारस, लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
0: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक मस्त और चकाचक हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं और आपके रेडियो सेट पर गूंज रही है बनारस की अपनी आवाज। बाबा विश्वनाथ के चरणों में शीश नवाकर गंगा मैया की लहरों को नमन करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत बुधवार की। घाटों पर सुबह की ताजी हवा, चाय की अड़ियों पर उबलती हुई चाय की खुशबू और कचौड़ी जलेबी का वो स्वाद, उफ, यही तो है हमारे बनारस का असली अल्हड़पन और मस्ती। अच्छा बनारस, देखिए, तकनीक हर दिन नए आयाम गढ़ रही है, है ना? कहीं नई खोज हो रही है तो कहीं पुराने साधनों में नई तकनीक जोड़कर उन्हें और उपयोगी बनाया जा रहा है। लेकिन क्या हम इन बदलावों के साथ कदम ताल कर पा रहे हैं? सच ये है कि हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते ही नहीं। दिमाग रोज की उसी गति में चलना चाहता है जिससे वो वर्षों से चलता आया है। यही वजह है कि जब कोई छोटी सी समस्या सामने आती है तो वो अचानक बड़ी चुनौती बन जाती है। गैस संकट इसका सटीक उदाहरण है। रसोई गैस की कमी ने ये एहसास करा दिया कि हमारी रसोई एक ही विकल्प पर टिकी हुई थी। ऐसे समय में उन विकल्पों की अहमियत सामने आई जिन्हें हम पहले नजरअंदाज करते रहे। इंडक्शन कुकटॉप जिसकी कमियों की चर्चा अक्सर होती थी, वही इस समय सहारा बनकर सामने आया। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे पहले से इसका उपयोग करते आए हैं, जिसकी एक वजह उनका टेक्निक से जुड़ा होना भी है। सवाल ये है कि हम इस तकनीक से पीछे क्यों रहें? हर तकनीक में कुछ न कुछ कमियां तो होती ही हैं, लेकिन समय रहते उसकी उपयोगिता पहचानना ही समझदारी है। आज समय की मांग है कि सोच को लचीला बनाया जाए और नई टेक्निक्स को अपनाने के लिए तैयार रहा जाए, खासकर रसोई जैसे इम्पोर्टेंट प्लेस पर। इससे जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं, वहीं आधुनिक उपकरण हमें और अधिक आत्मनिर्भर बना सकते हैं। भविष्य उन्हीं का होता है बनारस, जो बदलाव को अपनाने का साहस रखते हैं। इसलिए जरूरी है कि समय और टेक्निक के साथ खुद को भी बदला जाए। ये बदलाव हमें समस्याओं के नए विकल्प खोजने की समझ देता है और एक सुरक्षित, सरल और अधिक सशक्त जीवन की ओर ले जाता है, है ना? ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 8 जुलाई 2026 और दिन है आज बुधवार का। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर में आज खास। कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने रोपवे के निर्माण की जानकारी ली। इस बीच मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने मुख्यमंत्री को बताया कि अगस्त तक रोपवे का काम पूरा कर लिया जाएगा। ज्यादातर काम पूरा हो गया है, रोपवे स्टेशन के फिनिशिंग ट्रायल का काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के बॉर्डर एरिया में पुलिस विशेष सतर्कता बरते, पेट्रोलिंग बढ़ाए, हर 6 महीने में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बदले, दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण का काम जल्दी पूरा किया जाए, नियमानुसार मुआवजा वितरित करें और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तेजी करें। मुख्यमंत्री ने एकीकृत मंडल

लिए कार्यालय का निर्माण 18 महीने में पूरा कराने का लक्ष्य लिया है। उन्होंने कहा कि गंगा में नावों का संचालन सुरक्षित तरीके से होना चाहिए। इस सिलसिले में नाविकों के साथ बैठक की जाए, छोटी नावों का पंजीकरण नगर निगम से कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल पाइपलाइन बिछाए जाने के दौरान खोदी गई सड़कों के साथ मरम्मत का कार्य कराएं, इसमें कहीं से शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सड़क की खुदाई से पहले सभी विभागों के प्रमुख बैठक करें और समन्वय बनाकर काम करें। डीएम सत्येंद्र कुमार ने सीएम को बताया कि 2014 से अब तक 536 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। इनकी लागत 36,210 करोड़ रुपए है। 191 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सावन से जुड़ी तैयारियों की जानकारी पीपीटी के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी। और आज योगी आदित्यनाथ वाराणसी से प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिजनों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का तोहफा देंगे। जी हां, पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में सुबह 10 बजे से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लागू होने के साथ ही प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें प्रदेश के 1.10 करोड़ बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्टेशनरी के लिए 1200 रुपए डीबीटी के माध्यम से धनराशि भी हस्तांतरित की जाएगी। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार मंत्री संदीप सिंह और माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री गुलाब देवी भी उपस्थित रहेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सावन की तैयारियों के मद्देनजर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में कल मंगलवार को मंदिर, जिला सीआरपीएफ और पुलिस प्रशासन की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, चिकित्सा व्यवस्था और यातायात सहित 50 से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हुई। सावन भर वीआईपी प्रोटोकॉल दर्शन बंद रहेंगे। प्रवेश और निकासी के लिए 7 द्वार होंगे। बाबा के 5 विशेष श्रृंगार होंगे। सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। मंगलवार को धाम के बोर्ड रूम में मंडलायुक्त एस राजलिंगम और पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है कि सावन में वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी तरह की सिफारिश और विशेष अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और आपको कुछ खास बातें बता दें कि खाली पेट दर्शन के लिए कतार में बिल्कुल मत लगिएगा। भीड़ के कारण इंतजार लंबा हो सकता है। समय समय पर ग्लूकोज, ओआरएस घोल, हल्का फुल्का जलपान, बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट, पेयजल काउंटर और गुड़ की व्यवस्था भी की जाएगी वहां पर। और धाम में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई स्थानों पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ टीमें तैनात की जाएंगी। साथ ही मंदिर की एम्बुलेंस भी वहां मौजूद रहेगी। तो आने वाले सावन के लिए किए गए हैं बहुत पुख्ता इंतजाम। इसके साथ ही आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी और बेहतर होने जा रही है। 1 अगस्त से बेंगलुरु और वाराणसी के बीच नई फ्लाइट चलाने की घोषणा की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि मुंबई में मूसलाधार बारिश के कारण ट्रैक पर कई जगहों पर पानी भरने के कारण लगातार तीसरे दिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 4 ट्रेनें देरी से वाराणसी पहुंची। इसमें महानगरी एक्सप्रेस सीएसटी स्टेशन से ही 4 घंटे की देरी से चली। और बारिश की बात हो रही है तो आपको ये भी बता दें कि काशी में मानसून अब अपने रंग में आ चुका है। लगातार दूसरे दिन बारिश ने काशी के तापमान को गिरा दिया। कल मंगलवार को 31.6 डिग्री के साथ वाराणसी प्रदेश का दूसरा सबसे कम तापमान वाला जिला गया। पूरे दिन रुक रुक कर बारिश के चलते अधिकतम तापमान 3.3 डिग्री तक नीचे चला गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री नीचे यानी कि 25.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। हवा में नमी 95% से भी ज्यादा रही। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अगले 3 से 4 दिनों के लिए किसी तरह का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। आसपास के जिलों में बारिश का अनुमान है। 3 दिनों में करीब 60 किलोमीटर तक बारिश हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार के अनुसार काशी सहित मध्य प्रदेश के आसपास निम्न दाब के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ गई है और उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने दाब के चलते भी मानसून एक्टिव रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। मौसमी द्रोणी ने अपनी वर्तमान स्थिति से उत्तर की ओर खिसकने से 10 जुलाई से काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसूनी सक्रियता में बढ़ोतरी हो सकती है। तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 8th ऑफ जुलाई।
आपको बता दें कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा

1497 में आज ही के दिन शुरू की थी। इस यात्रा के दौरान वो अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए 1998 में कालीकट पहुंचे थे, जिससे यूरोप और भारत के बीच एक नए सीधे समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। 1954 में आज के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल परियोजना पर स्थित नंगल बांध को देश को समर्पित किया था। और अब बर्थ डेज की बात कर ली जाए तो आज के दिन 1914 में भारत के प्रमुख नेताओं में से एक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का जन्म हुआ। उन्होंने 1977 से 2000 तक पश्चिम बंगाल में लगातार 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से मशहूर सौरव गांगुली का भी जन्म आज ही के दिन ईयर 1972 में पश्चिम बंगाल में हुआ। और इसी के साथ आज ही के दिन बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर का भी जन्मदिन है। ईयर 1958 में दिल्ली में एक पंजाबी सिख परिवार में उनका जन्म हुआ। नीतू कपूर का मूल नाम हरमीत कौर रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 6 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। So this was all about today's special events and history. And now Banaras, let's move on to your favorite segment. Baat Zarurat Ki. देखिए, बरसात जो है वो थोड़ी थोड़ी तो शुरू हो ही चुकी है, क्योंकि जुलाई का महीना आ चुका है। भले ही बनारस में नहीं हो रही है अभी बारिश, लेकिन बारिश का जो महीना है वो शुरू हो चुका है। और बरसात आते ही बाजार में जामुन की बहार आ जाती है ना। खट्टे मीठे स्वाद वाला ये गहरे बैंगनी रंग का फल पोषक तत्वों का खजाना होता है। इसमें फाइबर, आयरन, विटामिन सी और कई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने, पाचन सुधारने, इम्यूनिटी मजबूत बनाने और हार्ट हेल्थ बेहतर रखने में बहुत मदद करता है। प्राचीन हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बू द्वीप कहा गया है, यानी जामुन के वृक्षों की भूमि। इसका मतलब है कि जामुन का रिश्ता हमारी संस्कृति और इतिहास से भी है। हालांकि जामुन के फायदे तभी मिलते हैं जब इसे सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से खाया जाए। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जामुन की और जानेंगे कि जामुन खाने का सही तरीका क्या है, इसे कब और कितना खाना चाहिए, किन चीजों के साथ इसे खाने से बचना चाहिए। देखिए, पके हुए ताजे और साफ जामुन हमेशा चुनना चाहिए। खाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए, धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए ताकि पाचन जो है वो बेहतर हो। अगर पहली बार खा रहे हैं तो कम मात्रा से शुरुआत करें। जामुन खाने का सबसे सही समय सुबह का होता है, खासकर नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने से पहले, यानी मिड मॉर्निंग टाइम। इस समय डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। इस जामुन में मौजूद पोषक तत्व जैसे फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। खाली पेट जामुन कभी नहीं खाना चाहिए। इसका स्वाद थोड़ा कसैला यानी कि थोड़ा खट्टा कड़वा होता है। इससे पेट में गैस, भारीपन या मरोड़ जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। जामुन खाने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, जिससे ये आसानी से पच सके और इसके पोषक तत्व ठीक से अवशोषित हो सके। चुटकी भर काले नमक के साथ इसे खाना फायदेमंद माना जाता है। जामुन का छिलका जो होता है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने, पाचन सुधारने और बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 10 से 15 जामुन तक खा सकता है। आमतौर पर 5 साल से अधिक के बच्चों को जामुन दे सकते हैं। शुरुआत में 3 से 4 जामुन ही दें ताकि शरीर की प्रतिक्रिया जो है वो समझी जा सके। शुगर पेशेंट्स के लिए 8 से 10 जामुन की मात्रा सेफ मानी जाती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने से ये ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ाता। देखिए, जामुन हेल्दी फल है, लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में खाने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे लो ब्लड प्रेशर, कब्ज, एसिडिटी, गले में जलन, मुंह में सूखापन और एलर्जिक रिएक्शन। जामुन को मीठे फलों के साथ मिलाकर खाया जा सकता है, ये पाचन के लिए बेहतर होता है। इससे बहुत ज्यादा खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही केला, सेब, पपीता, नाशपाती, चीकू, तरबूज, खरबूजा के साथ भी जामुन को कभी नहीं खाना चाहिए। जामुन को सलाद में मिलाकर खा सकते हैं। इसका खट्टा मीठा और हल्का कसैला स्वाद सलाद में फाइबर की मात्रा भी बढ़ाता है। ये पाचन को बेहतर बनाने में मदद भी करता है। नट्स में

मौजूद हेल्दी फैट और प्रोटीन जामुन के नेचुरल शुगर के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। इससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन सेटाइटी बढ़ाता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है और बार बार भूख कम लगती है। जामुन को मिंट यानी कि पुदीना, काला नमक या चाट मसाले के साथ खाना सेफ है। पुदीना और काला नमक स्वाद बढ़ाने के साथ साथ पाचन में भी मदद करते हैं। चाट मसाला और काला नमक में सोडियम ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में इसे नहीं डालना चाहिए। जामुन पोषक तत्वों से भरपूर है, लेकिन कुछ फूड कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिनके साथ इसे खाने से पाचन में गड़बड़ी हो सकती है, जैसे कि दूध, अचार, ठंडा या ज्यादा पानी, दही, ज्यादा नमक या खट्टे फल। जामुन खाने के तुरंत बाद दूध पीना सही नहीं माना जाता। जामुन खाने के बाद कम से कम 4 घंटे के बाद ही आप दूध पी सकते हैं। जामुन की तासीर खट्टी और कसैली होती है, जबकि दूध का स्वभाव अलग होता है। जब दोनों को एक साथ या तुरंत बाद लिया जाता है तो जामुन में मौजूद एसिड दूध के प्रोटीन को जल्दी जमा सकता है। इससे कुछ लोगों को पेट ब्लोटिंग, गैस, अपच, पेट दर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए जामुन खाने के कम 4 घंटे बाद दूध पीने की सलाह दी जाती है। जामुन खाने के बाद दही नहीं खाना चाहिए। जामुन और दही दोनों में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं और इनका एक साथ सेवन डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ सकता है। जामुन खुद हल्का खट्टा होता है। अगर इसके साथ संतरा, नींबू जैसे खट्टे फल खाने से पेट में एसिडिटी या जलन बढ़ सकती है। जामुन खाने के 20 से 30 मिनट का गैप रखें, फिर पानी पिएं। तुरंत पानी पीने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पेट दर्द, भारीपन, खांसी, गले में खराश और गले में जलन। जामुन हल्का और जल्दी पचने वाला फल है, जबकि भारी खाना, भुना या ज्यादा फैट प्रोटीन धीरे पचता है। ऐसे में दोनों होने पर पाचन की प्रक्रिया गड़बड़ हो सकती है। गैस, ब्लोटिंग, पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। बेहतर है कि जामुन खाने के बाद कम से कम 30 मिनट का गैप रखकर ही भारी भोजन करें। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं हम, तो जामुन ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए इस मानसून जामुन का स्वाद भी लें और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी पाएं। बात जरूरत की। So I hope आज Good Morning Banaras का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। And if yes, then do share your valuable views on pkldairvaranasi@gmail.com। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। And here I'm signing off. Do take very good care of yourselves. खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे। Wishing you a very happy day. Bye bye.

गुड मॉर्निंग बनारस। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता

0: تو یہ دنیا رہنے کے لیے کہیں اچھی جگہ ہوتی۔ اے پی جے عبد الکلام۔
1: بڑھتے ہوئے یا دھوئے سے ہے سب پریشان، شدھ وایو درلبھ خطرے میں ہے منشیہ کی جان، کوڑا اور پلاسٹک جو لوگ جلائیں پردوشن کے کارن بن جائیں، سانس لینے میں تکلیف آئے آروگیہ کو ہانی پہنچائیں۔
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अल नीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में खरीफ सीजन की प्रगति और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित असर को देखते हुए गई तैयारियों की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए, राज्यों के साथ मिलकर उन जिलों पर मानसून या देर से आए मानसून के असर का आकलन किया जाए जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। यह भी निर्देश दिया गया कि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाए, साथ ही चारे के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाए और राज्यों के साथ मिलकर इस बारे में नियमित निगरानी की जाए। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के लिए मंत्रालयों को राज्यों के साथ मिलकर आपसी तालमेल से काम करना चाहिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था और आगामी श्रावण मास की तैयारियों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। आज श्री योगी वाराणसी से ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से प्रदेश में काम करने वाले 12 लाख शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री चित्रकूट में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
4: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
2: मुख्यमंत्री ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपए की लागत की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है।
4: अच्छी सरकार चुनती

0: तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है। सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है तो विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
2: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, ये निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
1: इस मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा कि वह SIT की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का कल 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 विद्यार्थियों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 विद्यार्थियों को डिग्री और 52 विद्यार्थियों को PhD अवार्ड भी प्रदान किए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
4: 20 लाख रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में अपना रहे हैं, जिसमें से एक बारी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
1: प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश और बूंदाबांदी का क्रम जारी है। लखनऊ, फर्रुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतमबुद्ध नगर और हापुड़ सहित कई स्थानों पर कल बारिश दर्ज की गई। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हवाओं के बीच बारिश के आसार बने हैं। पीलीभीत जिले में बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अल नीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई

0: समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना का शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार है निर्मल सैनी। राग है नट भैरव। आपके साथ तबला संगति चंदन विश्वकर्मा की है।

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे निर्मल सैनी, राग था नट भैरव, आपके साथ तबला संगति चंदन विश्वकर्मा की थी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। केवल काली पुतली का दान, ज्योतिदान, नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाए। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे कुछ ही पलों में समाचार प्रभात। रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचार प्रभात की प्रतीक्षा करें।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवाद समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप दास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।

0: एशिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर

0: कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है,
0: अहमदाबाद सिलसिले

0: किलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाई कोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया। उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज। दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम। दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
2: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Task Force FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early conclusion of Memorandum of Understanding on counter-terrorism cooperation, which is expected to be signed soon. The two countries welcome the planned third India-Indonesia security dialogue as a platform to expand cooperation in counter-terrorism, transnational crime, cyber security, emerging technologies, defense industry, maritime security and space. Both leaders also agreed to explore greater cooperation in the cyber domain through policy dialogue, capacity building and exchange of expertise and best practices. Sandeep Dashgupta, Akashvani News, Jakarta.
1: Prime Minister Narendra Modi has become the first

0: first Indian Prime Minister to address the Parliament of Indonesia. Addressing Indonesian lawmakers in Jakarta, Mr. Modi called for a new era in bilateral relations anchored in shared civilizational heritage, democratic values and a common vision for the future. Describing India as a mother of democracy, the Prime Minister said New Delhi is committed to strengthening democratic linkages with Indonesia.
1: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अल-अक़वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदामात पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमेरिका ने अबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। और फुटबॉल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निपटने के लिए फैसलाकुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की 1267 बंदिशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इससे निपटने में तआवुन को गहरा करने से इत्तेफाक किया है। तआवुन में दहशतगर्दी के लिए रुकूम मुहैया किए जाने और काले धन को जायज बनाने की रोकथाम को मुस्तहकम बनाने, दहशतगर्दाना सरगर्मियों को माली मदद पहुंचाने की रोकथाम, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों इस्तेमाल और लोगों को ऑनलाइन बुनियाद परस्त बनाए जाने से निपटने, नीज डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए दहशतगर्दों की भर्ती रोकने के इकदाम शामिल हैं। दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने वाले रवैये का जिक्र करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दों के माली नेटवर्क को रोकने और दो तरफा व कसीर मुल्की तआवुन में इजाफा करने का आज़्म किया, जिसमें अक़वामे मुत्तहिदा और मालिक कार्रवाई की टास्क फोर्स FATF की सरगर्मियां भी शामिल हैं। दहशतगर्दी और बैन मुल्की मुनज़्ज़म जराइम के दरमियान ताल्लुक का एतराफ़ करते हुए भारत और इंडोनेशिया ने अपने घरेलू क़वानीन और बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक एक दूसरे को मालूमात फराहम करने और बेहतरीन तौर तरीकों से आगाह करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने दहशतगर्दी के तआवुन से निपटने के लिए एक मुफाहमतनामे को जल्द मुकम्मल किए जाने का भी खैर मकदम किया।

0: या उम्मीद है कि इस पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय वजीर आजम हैं जिन्होंने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। जकार्ता में इंडोनेशिया के कानून साज अरकान से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने ऐसे दोतरफा ताल्लुकात में एक नए दौर के लिए कहा जो मुश्तरका तहजीबी विरासत, जमहूरी अकदार और मुस्तकबिल के मुश्तरका खाके पर मुश्तमिल हो। भारत को जमहूरियत की मां करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ जमहूरी राब्तों को मुस्तहकम बनाने का अहद किए हुए है।
2: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में

0: हिंदी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्ने का तुंगल इक्का का विचार है।
1: भारत की तरक्याती सफर और विकसित भारत 2047 के तस्वीर नीज गोल्डन इंडोनेशिया 2045 के दरमियान हम आहंगी को उजागर करते हुए वजीर आजम मोदी ने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में मजीद गहरी शराकत दारी के लिए कहा।
0: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: वजीर आजम मोदी आज इंडोनेशिया के सदर के साथ योग्यकर्ता में मशहूर प्रम्बलन मंदिर के दर्शन करेंगे। उनके इस दौरे से गहरे सकाफती और तहजीबी रिश्तों की अहमियत का इजहार होता है, जिनकी वजह से भारत और इंडोनेशिया 1000 साल से ज्यादा अरसे से एक दूसरे से वाबस्ता हैं। प्रम्बलन 9वीं सदी में तामीर किया गया था और ये इंडोनेशिया का हिंदू मंदिर का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो जुनूब मशरकी एशिया के बेहतरीन तामीराती शाहकारों में शामिल होता है। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने कल जकार्ता में भारतीय बिरादरी की तरफ से दिए गए एक इस्तकबालिया में शिरकत की। खुसूसी इशारे के तौर पर इंडोनेशिया के सदर जनाब सुबियांतो ने भी वजीर आजम मोदी के साथ इस तकरीब में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत में हालिया बरसों में काबिले जिक्र तरक्की को उजागर किया। भारत ने ये तरक्की अगले दौर के बुनियादी ढांचे की तरक्की से लेकर स्टार्टअप इनकलाब तक की है और सामाजिक तरक्की के प्रोग्रामों में खातिरखा तौसी भी की है, जिससे 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं।
0: बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शांत से जिंदगी जीने आरंभ करते।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर मेलबर्न पहुंचने वाले हैं। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथनी एल्बनीज के साथ 3री सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहाँ वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बाहमी बातचीत से कई अहम शोबों में इश्तराक को फरोग हासिल होगा। दोनों के ताल्लुकात में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। अशिया और खिदमात के शोबे में दोतरफा तिजारत 2025 में पहले ही $33 अरब से तजावुज कर गई है और अब 2030 तक इसे $1 खरब तक पहुंचाने का निशाना रखा गया है। दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक तेजी के साथ साझेदारी के एक अहम सुतून के तौर पर उभरा है। गुज़श्ता महीने नई दिल्ली में वज़ीरे दिफा के दूसरे मुज़ाकरात के तनाजुर में दोनों मुल्क सनअती इश्तराक और बहरी सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बना रहे हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम के दफ्तर PMO ने मुख्तलिफ शोबों पर एलनिनो के मुमकिना असरात और तैयारी से मुतालिक इकदामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की जायजा मीटिंग मुनाकिद की। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा की सदारत में यह मीटिंग सेवा तीर्थ में हुई। इस मीटिंग में 15 से ज्यादा वजारतों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार मौजूद थे। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: इस मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा ने यह हिदायत दी कि मजमूई सूरतेहाल पर लगातार नजर रखी जाए और रियासतों के साथ

0: तालमेल कायम करके जल्द मुतासिर होने वाले जिलों पर मानसून या ताखीर से पहुंचने वाले मानसून के असरात का जायजा लिया जाए ताकि जरूरत पेश आने पर जरूरी इकदाम किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जिलों में पीने के पानी की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दस्तियाब पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से किए जाने की जरूरत उजागर की। इधर भारतीय मौसमियात महकमे के अफसरों ने जून और जुलाई में बारिश की मजमू सूरत हाल का खाका पेश किया। पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे ने बताया कि वो लगातार नजर रखे हुए हैं और फिलहाल सूरत हाल मुस्तहकम है। दिल्ली से प्रिया वंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोलकाता और उसके अतराफ 5 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाज बैंक खातों के जरिए मुश्तबा रकूम की मुंतकली गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठा करने और मुबैना गैर कानूनी माली लेन देन के सिलसिले में की गई है। तलाशी की यह कार्रवाई एविएशन के शोबे में काम करने वाली प्राइवेट फर्म केयरवेल ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स और एक मुबैना इलेक्टोरल ट्रस्ट से वाबस्ता ठिकानों पर की गई। ईडी की इब्तदाई छानबीन के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मशकूक मकासद के लिए एविएशन और ट्रेवल कंपनियों के तवसुस से मुंतकिल की गई। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2023 और इस साल जून के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के खातों से तकरीबन 160 करोड़ रुपए प्राइवेट एविएशन फर्म और उससे वाबस्ता इदारे को मुंतकिल किए गए। अमरीकी फौज ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले आबनाए हुरमुज में 3 तजारती जहाजों पर हमले के कुछ ही घंटे बाद किए गए हैं। अमेरिका की मरकजी कमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि अमेरिकी फौजों ने यह हमले एक बैन अलाक्वामी गुजरगाह में कमर्शियल जहाजों पर हमले करने के का सख्त बदला लेने के लिए किए हैं जिनमें बेकसूर शहरी सवार थे। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी किशम और बंदरगाह और बंदर अब्बास में इन धमाकों की इत्तला दी है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका की तरफ से ये ताजा हमले माहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने एक लाइसेंस को भी मंसूख कर दिया है जिसके तहत अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई को खत्म करने से मुतालिक एक अबूरी समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान के तेल की फरोख की इजाजत दी गई थी। अमरीका के अफसर ने बताया कि यह लाइसेंस इसलिए मंसूख किया गया है कि आबनाए हुरमुज में ईरान की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और जरूरत है कि ईरान इसका नतीजा भुगते। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वंकूवर में पेनल्टी शूट आउट में कोलंबिया को 3-4 गोल से हराकर 1954 के बाद से पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इजाफी वक्त के बाद भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थी। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में एटलांटा में अर्जेंटीना ने मिस्र को 2-3 गोल से हरा दिया। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 2 गोल से पीछे चल रहा था। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की तरफ से क्रिस्टियानो रोमारो ने 79वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और एंजो फर्नांडेज ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके अर्जेंटीना की जीत की राह हमवार कर दी। मर्दों की क्रिकेट में नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर कल रात तीसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 202 रन का निशान रखा था लेकिन भारत की पूरी टीम 11 ओवर्स और 4 गेंदों में सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
0: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत इंडोनेशिया में शराकत दारी के सुनहरे बाब का आगाज। वजीर आजम मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने की खबर को भी अखबारात ने पहले सफे पर पेश किया है। माहौलियाती तहफ्फुज के बगैर तरक्की सरासर बेमाना है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को इनकलाब और दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने केरलम के वायनाड में बड़े पैमाने पर चट्टान खिसकने के वाकये में कम अज कम 3 अफराद के हलाक और मुतादिद के जख्मी होने की खबर को अपने पहले सफे पर शाये किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद बैन अलाक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुजाकिरात शुरू नहीं होंगे, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का बयान, अमेरिका का तुर्किया पर आई पाबंदियां खत्म करने का ऐलान।
1: और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत

0: निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक़वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वजीर आजम के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाब्तगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, वेव्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन आईआर ऐप पर 8:45 और 16 सेकेंड। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा इन संदेशों के बाद।
2: उसकी दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
3: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए,
3: सतर्क रहिए। स्पेशल कैंप्स ऑन अनक्लेम असेट्स आर बीइंग कंडक्टेड in all districts across the country during October to December 2025.
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658,
5: 0542227658।
7: श्रोताओ, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है संक्रामक रोगों से बचाओ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर संजय चौरसिया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

श्रोताओं, आप सभी को मधुरमा कार्यक्रम के साथ आज के आपके रेडियो साथी सिद्धार्थ का प्यार भरा नमस्कार। आज मधुरमा में शामिल हैं फिल्मी जो उन दिनों की याद दिलाते हैं जब नीतू सिंह इस दुनिया में आईं। फिल्म अभिनेत्री नीतू सिंह के फिल्मों के गीत हम आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे। आज इनका बर्थडे है, यानी जन्मदिन है, तो नीतू जी को

0: नीतू सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के जन्मदिन की। और चूंकि अब हैं ये नीतू कपूर, सबसे पहले नीतू सिंह जो अभी नीतू कपूर, इनको हम सभी जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ दे ही चुके हैं। एक बार पुनः इनका जन्म 8 जुलाई सन 1958 को दिल्ली में हुआ। नीतू सिंह बाल कलाकार के रूप में 1966 में फिल्म सूरत से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म रिक्शावाला 1973 में मुख्य भूमिका में ये नज़र आईं। सन 1970 और 1980 के दशक के आरंभिक वर्षों में हिंदी सिनेमा में अपने कामयाबी की वजह से ये जानी जाती हैं, क्योंकि एक बेहतरीन अभिनेत्री थीं उन दिनों, आज भी हैं। आइए सुने फिल्म दीवार 1975 का ये गीत, जिसमें वो अभिनेत्री थीं।
1: कह दूं तुम्हें या चुप रहूं,
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है,

श्रोतों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का मधुरिमा आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। धीरे धीरे प्रतिभा का लोहा उन्होंने मनवाना शुरू किया और एक एक कर उस दौर की सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बनी। यह फिल्म कभी कभी का गीत रिलीज साल 1976, तेरे चेहरे से। ये गीत के बोल हैं, पर्दे पर नजर आए ऋषि कपूर और नीतू सिंह।

0: एरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है संक्रामक रोगों से बचाओ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर संजय चौरसिया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का STD कोड है 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित मधुरमा। आज का कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म अभिनेत्री नीतू सिंह पर। ये अगला गीत फिल्म काला पत्थर से है, रिलीज सन 1979।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है संक्रामक रोगों से बचाओ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर संजय चौरसिया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित मधुरमा आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। आज का कार्यक्रम केंद्रित है नीतू सिंह पर। ये रचना जो अब आप सुनेंगे फिल्म अमर अकबर एंथनी से हमने लिया है। रिलीज साल 1977।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

और अगला और अंतिम गीत फिल्म परवरिश, इस फिल्म से रिलीज सन 1977, और इस गीत में अमिताभ बच्चन के साथ नीतू सिंह नज़र आईं। और इसी अंतिम गीत के साथ ही आज का मधुरमा कार्यक्रम समाप्त करने की आपके रेडियो दोस्त सिद्धार्थ को यहीं दें अनुमति। नमस्कार, आपको बताते चलें कि आज का कार्यक्रम केंद्रित था नीतू सिंह जो अभय नीतू कपूर इन पर। चूंकि इनका आज जन्मदिन है तो पुनः इनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, और अब नमस्ते।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
1: चलपत कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम नई दिल्ली के ज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसका लाइव प्रसारण कानपुर नगर के HBTU ऑडिटोरियम नवाबगंज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ सांसद अकबरपुर देवेंद्र सिंह बोले मौजूद रहे। गौरतलब है कि योजना के माध्यम से प्रथम बार नियोजित कर्मचारियों एवं अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए आभार जताया।
2: मेरा नाम यश कुमार है। ये जो हमें भारत सरकार की वजह से ये पैसे मिले हैं PFO की वजह से, इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।
1: जनपद कानपुर नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA के लाल बहादुर शास्त्री कृषक सभागार में पिछले दिनों एक दिवसीय मंडल स्तरीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश कुमार सचान ने किया। कॉन्क्लेव में पहली बार पोल्ट्री उद्योग से जुड़े अग्रणी उद्यमियों, विशेषज्ञों एवं प्रमुख फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों, किसानों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ तकनीकी संवाद किया गया। इस दौरान आधुनिक कुक्कुट पालन उत्पादन विविध तथा उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों, पोल्ट्री उद्योग के प्रतिनिधियों एवं फार्मा कंपनियों के विशेषज्ञों ने मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों की रोकथाम, उन्नत दवाओं एवं टीकों का उपयोग, गुणवत्ता पूर्वक फीड सप्लीमेंट तथा आधुनिक प्रबंधन तकनीक पर विस्तृत जानकारी दिया, जिससे किसान वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पोल्ट्री कॉन्क्लेव को आवश्यक बताते हुए कहा,
3: पोल्ट्री उद्योग बढ़ाने की जरूरत है, इससे ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत है। जितनी डिमांड है उतना उत्पादन हमारे यहाँ नहीं है। प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके, ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो आवश्यकता के अनुरूप डिमांड है आपूर्ति पर आत्मनिर्भर बनने का काम।
1: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कृषि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर कृषि कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप विकसित कृषि और खेती को लेकर देश में धरती बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। रासायनिक फर्टिलाइजर का कम प्रयोग किए जाने और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, गोमूत्र और कंपोस्ट खाद, बायो फर्टिलाइजर के उपयोग करने और हरी खाद खेतों में लगाने और दलहन तथा तिलहन की खेती करने के लिए किसानों को योजनाओं के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा,
4: इस साल सुपर एलिनो के प्रभाव के वजह से बरसात की कम संभावना है, इसलिए उन क्षेत्रों में जहां पर बरसात कम होती है या नरों के साधन नहीं है, वहां पर दलहन और तिलहन की खेती को ही करना श्रेयस्कर होगा। हम लोग लगभग 5 लाख मिली के विभिन्न जनपदों के भीतर दलहन और तिलहन के निःशुल्क बीज विभाग के द्वारा वितरित किया जा रहा है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो अपना बीमा कवरेज भी अपने फसलों का करा लें, तो उससे उनको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगी और उनके नुकसान का 25% से लेकर 40% भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से कराई जा सकती है।
1: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा प्रमुख उपलब्धियों को लेकर सांसद

0: कानपुर रमेश अवस्थी के साथ बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मीडिया संवाद का आयोजन बीजेपी महानगर कार्यालय में किया। इस दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर में किए गए विकास, जन कल्याण, स्वास्थ्य एवं जनहित कार्यों को साझा किया। पिछले दिनों कानपुर नगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का सांसद कानपुर रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने परमठ पार्क में वृक्षारोपण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीडिया संवाद के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सहित दुनिया भर के देश युद्ध से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध से असुरक्षा का वातावरण बना है, अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा नुकसान हुआ है और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर के देश इससे प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से ही कहा था भारत शांति के पक्ष में है, भारत बुद्ध में विश्वास रखता है, युद्ध में नहीं। अनुराग ठाकुर ने शिप पर हुए हमले पर कहा कि भारत ने संज्ञान लेते हुए अमेरिकी दूतावास से शब्दों में हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह के हमले स्वीकार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल्दी भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जिससे देश में खेलों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा। खेलो इंडिया फिट इंडिया को बल दिया जा रहा है। बजट को 800 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ किया गया है।
1: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
2: मैनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 11 जुलाई को होगा। इस आयोजन में 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। जिला प्रशासन इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के साथ निरीक्षण कर श्री देवी मेला क्षेत्र को सामूहिक विवाह आयोजन के लिए चुना और मौके पर अधिकारियों को भव्य आयोजन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समारोह में लगभग 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर लगभग 4,000 से 5,000 व्यक्तियों के उपस्थित रहने की संभावना है। संख्या के अनुसार वर्षा को ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं कार्यक्रम से पूर्व सुनिश्चित की जाएं। मैनपुरी जिले में आजकल मिशन समाधान चर्चा का विषय है। मिशन समाधान के दौरान जहां हजारों बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हुई, वहीं उन गरीबों के चेहरों पर खुशियां देखने को मिली जिनके जीने का सहारा छीन लिया गया था। कई मामले ऐसे देखने को मिले जहां 48 साल बाद जमीन कब्जा मुक्त हुई और जमीन पर वास्तविक हकदार को कब्जा दिलाया गया। कुरावली ब्लॉक का यह मामला बहुत ही सुर्खियों में रहा। मिशन समाधान के अंतर्गत ही जिलाधिकारी ने तहसील भोगांव के ग्राम उस्मानपुर में लगभग 17 वर्ष पुराने भूमि विवाद का भी मौके पर पहुंचकर निस्तारण कराया। शिकायतकर्ता चेतराम वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्वयं करीब 1 घंटा 30 मिनट तक खेत की मेड़ पर खड़े रहकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में राजस्व टीम से भूमि की विधिवत पैमाइश कराई। सभी अभिलेखों एवं सीमांकन का परीक्षण कराने के उपरांत मौके पर ही विवाद का समाधान कराया, जिससे वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया और शिकायतकर्ता को न्याय मिल सका। मैनपुरी शहर के 20,000 बिजली उपभोक्ताओं का लोड बिजली विभाग द्वारा बढ़ा दिया गया। उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा मैसेज देकर यह सूचना दी गई है। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने कहा कि उपभोग के अनुसार लोड बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर लोड बढ़ने से किसी उपभोक्ता को शिकायत है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, बिजली विभाग उसका समाधान कराएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिला विद्यालय यान परिवहन समिति की बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी विद्यालय वाहन बिना फिटनेस के संचालित न हो। सभी विद्यालय वाहनों से सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाए। बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ न हो। उन्होंने जानकारी करने पर पाया कि जनपद के 252 विद्यालयों के नाम 745 वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से 240 वाहनों में फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि कमियां हैं, जिस पर उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऐसे स्कूली वाहनों की फिटनेस सहित अन्य कमियों को दूर कराएं। यदि विभाग में किसी के द्वारा स्कूली बसों के स्वामियों का शोषण किया गया तो दोषियों को चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी अनफिट वाहन छात्रों को लाने ले जाने का कार्य न करे। यदि किसी भी विद्यालय में अनफिट वाहनों के संचालन के कारण कोई दुर्घटना घटित हुई तो संबंधित विद्यालय प्रबंध

0: प्रबंधन की जिम्मेदारी तय कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। स्कूली वाहनों की फिटनेस के संबंध में जारी निर्देशों पर सुदिति ग्लोबल एकेडमी के निदेशक लव मोहन ने बताया कि स्कूली वाहनों की फिटनेस पर संस्था द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बढ़ती जाती है। स्कूल बस की गति के लिए भी नियम निर्धारित है। एआरटीओ सिद्धार्थ यादव ने कहा कि अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अनफिट पाए जाने वाले वाहनों के स्कूल संचालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। स्कूल संचालकों को बता दिया गया है कि विद्यालय के वाहन में कोई कमी पाए जाने पर स्कूल संचालक जिम्मेदार होंगे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में। ये पहली सूचना लंका थाना से हमें मिली है। सूचना अनुसार अभिषेक कुमार सिंह, उम्र 28 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच, रंग सांवला, ये दिनांक 15/4/2025 को सायं 4:40 पर माधव मार्केट नगवा से लापता हैं। नगवा लंका से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। रंग इनका सांवला है, उम्र है 28 वर्ष, ये सफ़ेद शर्ट, ब्लू जीन्स और काले रंग का पाजामा ये पहने हुए हैं और इनके बारे में कोई भी जानकारी यदि आपके पास हो तो कृपया इन मोबाइल नंबरों पर आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 0878962141। एक बार फिर हम आपको मोबाइल नंबर बता देते हैं, 0878962141। एक और नंबर है 7991168411, 7991168411। आप इन मोबाइल नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। एक और सूचना हमें प्राप्त हुई है, ये सूचना हमें प्रभारी निरीक्षक थाना GP DDU चंदौली से प्राप्त हुई है। सूचना अनुसार गोविंद चंद्र वर्मन, इनके पिता का नाम है महेंद्र चंद्र वर्मन और इनकी उम्र है 58 वर्ष, ये 24/9/2025 को ट्रेन नंबर 15/48/4 से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन के लिए यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से दिखाई न दें देने जो आज तक घर नहीं पहुंचे हैं। यानी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से लापता हैं। जिनको भी इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले कृपया मोबाइल नंबर 94/54/54/82 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर एक बार पुनः हम आपको बताए देते हैं, 9454548289। लापता व्यक्ति का नाम है गोविंद चंद वर्मन। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
3: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है संक्रामक रोगों से बचाओ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर संजय चौरसिया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच।

0: 1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम कुछ ही पलों में हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी गोरखपुर के मरकज से आइए सुनते हैं।
1: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के प्रोग्राम में पहले आप समाअत फरमाएंगे दिलावर फिगार के ऊपर एक मुख्तसर तकरीर, इसके बाद आप समाअत फरमाएंगे डॉक्टर मुशीर अहमद से उनका एक मकाला शहरियार का तख्लीकी सफर, और कलाम शायर के तहत हमारी आज के शायर हैं जनाब अंजुम इरफानी। सामईन, आज उर्दू के मुमताज तंजिया मिजाहिया शायर दिलावर फिगार का योम पैदाइश है, इस मौके पर समाअत फरमाइए एक खसूसी तहरीर शहनशाह ज़राफ़त दिलावर फिगार। जूते के इंतखाब में मस्जिद में जब गए वो जूतियां पड़ी कि खुदा याद आ गया, आके बज़्मे शेर में शर्ते वफा पूरी तो कर, जितना खाना खा गया है इतनी मजदूरी तो कर, वहां जो लोग अनाड़ी हैं वक्त काटते हैं, यहां भी कुछ मुतशायर दिमाग चाटते हैं, सयाह जुल्फ को जो बन सवर के देखते हैं, सफेद बाल कहां अपने सर के देखते हैं। ये अशार हैं उस तंजिया और मिजाहिया शायर के जिसे पैरोडी का बादशाह कहा जाता है, मेरी मुराद है जनाब दिलावर फिगार से, आज उनका यौम पैदाइश है। मिजाहिया शायरी की दुनिया में उन्हें शहनशाह ज़राफ़त और अकबर सानी के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। उर्दू की मिजाहिया शायरी के हर दौर में वो एक अजीम शायर रहे। दिलावर फिगार मारूफ गजलों और नज्मों की पैरोडी इस शानदार तरीके से करते हैं कि उन्हें पैरोडी का बादशाह कहा जाता है। दिलावर फिगार का पूरा नाम दिलावर हुसैन था। वो 8 जुलाई सन 1929 को भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के कस्बा बदायूं में पैदा हुए थे। दिलावर ने शेरगोई का आगाज तकरीबन 14 बरस की उम्र में सन 1942 के आसपास किया। दिलावर फिगार ने अपनी इब्तदाई तालीम बदायूं में हासिल की थी। मजीद तालीम के लिए वो आगरा गए, जहां उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से पहले एमए उर्दू, फिर एमए अंग्रेजी और बादजां माशियात में एमए किया। उनकी गजलों का अव्वलीन मजमुआ हादसा के नाम से सन 1954 में शाया हुआ। उस वक्त वो अपना तखल्लुस शबाब लिखा करते थे और उनकी शायरी संजीदा थी। मुझे हंगामा हाय जीज से डरना नहीं आता कि हंगामे मेरी उम्रे रवां के साथ चलते हैं। दिलावर हुसैन के वालिद शाकिर हुसैन एक मुकामी स्कूल में टीचर थे, लेकिन उन्हें शेर सुखन से खुदा वास्ते का बैर था। दिलावर फिगार उनसे छुप छुप कर मुशायरों में जाते थे। दिलावर फिगार की तबीयत शेर व शायरी की जानिब बचपन से ही मायल थी। बदायूं शेर व सुखन की आमाजगाह था, आए दिन मुशायरे हुआ करते थे। उस दौर के मारूफ शोरा कैफी दत्तात्रेया, रविश सिद्दीकी, नूह नारवी, सीमाब अकबराबादी, सैयद आले रजा, नक्शब जारचुई, बोम मेरठी, जरीफ लखनवी, सफ़ी लखनवी और आरजू लखनवी वगैरह उन मुशायरों में शामिल हुआ करते थे। दिलावर को असाज़ा

0: पलकों से अंजुम जो सितारा भी गिरा, टूट कर पलकों से अंजुम जो सितारा भी गिरा, फिर किसी माबद का उसको तो कलश होना ही था, फिर किसी माबद का उसको तो कलश होना ही था, इस खराबे से गुजरते वक्त बस होना ही था, हो बगुले हम सफर तो पेशो पस होना ही था। दूसरी गजल का मतलब अर्ज है कि जो हर घड़ी का है मामूल जिक्र क्या करते, जो हर घड़ी का है मामूल जिक्र क्या करते, सफर कदम से बंधा है तो खिज्र क्या करते, सफर कदम से बंधा है तो खिज्र क्या करते, असुपुर्द कर दिए उसके जब अपने सारे उमूर, सुपुर्द कर दिए उसके जब अपने सारे उमूर, किसी भी नफ़ो खसारे की फिक्र क्या करते, किसी भी नफ़ो खसारे की फिक्र क्या करते, सरे नियाज झुकाना ही पड़ गया सबको, सरे नियाज झुकाना ही पड़ गया सबको, या आफरीदगां इजहारे किब्र क्या करते, या आफरीदगां इजहारे किब्र क्या करते, जब और खिंच न सका तूले इंतजार उनसे, जब और खिंच न सका तूले इंतजार उनसे, हिसार तोड़ चले अहले हिजर क्या करते, हिसार तोड़ चले अहले हिजर क्या करते, वो हब्स है कि घुटा जाए दम ही सीने में, वो हब्स है कि घुटा जाए दम ही सीने में, किसी ने भेजे हैं तोहफे में इत्र क्या करते, किसी ने भेजे हैं तोहफे में इत्र क्या करते, उसी की खोज का दावा है जब सभी को यहाँ, उसी की खोज का दावा है जब सभी को यहाँ, फिर इम्तियाज मुसलमानों गिब्र क्या करते, फिर इम्तियाज मुसलमानों गिब्र क्या करते, शरीके जश्न हुआ जब न वो दिला के यकीन, शरीके जश्न हुआ जब न वो दिला के यकीन, सो इंतजार पसे ईद फित्र क्या करते, सो इंतजार पसे ईद फित्र क्या करते, वहां सिरे से जुलेखा नजर न था कोई, वहां सिरे से जुलेखा नजर न था कोई, तो जाके हम सरे बाजारे मिस्र क्या करते, तो जाके हम सरे बाजारे मिस्र क्या करते, पए तवाफ जहां हैं हजारहा सूरज, पए तवाफ जहां हैं हजारहा सूरज, हम उस हुजूम में अंजुम थे सिफर क्या करते, हम उस हुजूम में अंजुम थे सिफर क्या करते, सफर कदम से बंधा है तो खिज्र क्या करते।
1: जनाब अंजुम इरफानी के नशार के साथ ही सामईन आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमें इजाजत दीजिए। मुआविन था मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।

श्रोतों कार्यक्रम आप सुन रहे हैं लोक संगीत का आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। आज के कलाकार हैं देवता दीन सरोज। इनके स्वर में प्रस्तुत है ये कहरवा।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार थे देवता दीन सरोज। इसी कहरवा के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार ठीक सुबह 10 बजे से।

श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का

संक्रामक रोगों से बचाव, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर संजय चौरसिया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम झनकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म शेषनाग से, और शेषनाग के इस गीत में संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, रचना है आनंद बख्शी की, और आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की।

शोधन कार्यक्रम फिल्म संगीत का झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर 10:07 और 3 सेकेंड। ये अगला गीत फिल्म धरती का ही पुकार के इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अच्छा गुड मॉर्निंग छोड़ हाथ
1: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
0: अरे 1 2 3 4 अरे बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला
2: गोपी वाटर हैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टीम फटे।

शो तो ये गीत जो आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं, और फिल्म का नाम था गोपी और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था, रचना राजेंद्र कृष्ण का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का छनकार आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से मीडियम वेव 241.54 मीटर और 1242 किलो हर्ट्ज़ पर। 10:16 अब 10:17 और 2 सेकेंड।

श्रोताओं, जसपाल सिंह की आवाज़ ये है और फिल्म का नाम है गीत का तचल। संगीत और गीत को लिखा रविंद्र जैन ने। रविंद्र जैन का ही गीत है और संगीत भी रविंद्र जैन का ही है। फिल्म का नाम गीत का तचल।

0: ये संदेश।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है संक्रामक रोगों से बचाओ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर संजय चौरसिया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से, अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म का नाम लव स्टोरी।

श्रोताओं, अमित कुमार के साथ साथी की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था लव स्टोरी। और अब ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म, जी हाँ, पहचान गए होंगे, ये गीत आप पहले सुन लीजिए।

जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। चंद्राणी मुखर्जी, सुरेश वाडकर और हिमलता की आवाज़ें। फिल्म का नाम पहेली, रचना रविंद्र जैन की।

श्रोताओं, फिल्म पहेली का ये गीत आप सुन रहे थे हेमलता सुरेश वाडकर और चंद्राणी मुखर्जी की आवाज़ें थीं। संगीत और गीत रविंद्र जैन का। कार्यक्रम झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। 10:30 और 27 सेकेंड।

श्रोताओं, फिल्म का नाम था प्रेम नगर और आवाज़ें किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की थी। संगीत सचिन देव बर्मन का और रचना आनंद बख्शी की थी। कार्यक्रम झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम 10:36 और 31 सेकेंड।

0: श्रोता मुकेश की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था रजनीगंधा, रचना योगेश की थी। कार्यक्रम झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।
1: क्या कहा?

श्रोताओं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, फिल्म का नाम रामपुर का लक्ष्मण, संगीत आर डी बर्मन और रचना मजरूह सुल्तानपुरी की। कार्यक्रम फिल्म संगीत का झनकार आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से 10:44 और 6 सेकेंड।

श्रोताओं झंकार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़। फिल्म का नाम था राजपूत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और रचना आनंद बख्शी की थी। 10:50 अब 10:51 और 2 सेकंड। कार्यक्रम का अंतिम गीत जिस रचना के साथ आज का कार्यक्रम झंकार अब यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दें। नमस्कार। और ये रचना है फिल्म द बर्निंग ट्रेन से।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज। वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपको शामिल करते हैं मेल के जरिए, और आप जो मेल भेजते हैं उसे हम सहेज कर रखते हैं। तो लेकिन एक और भी इसमें कंडीशन यह है कि कंडीशन यही है कि पहले से आए हुए मेल को ही हम इसमें शामिल करते हैं। जो श्रोता इस कार्यक्रम में आगे शामिल होना चाहते हैं वो हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन उनका जो आज मेल आएगा उसे अगले कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और मेल भेजने के लिए नंबर नोट कीजिए, हमारी मेल आईडी AIR VNS FGEXP@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुने, AIR VNS FGEXP@gmail.com। इस मेल पर आप जो भी मेल भेजेंगे उसे अगले कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अभी हम शुरू कर रहे हैं पहले से आए हुए मेल संदेशों पर कार्यक्रम फरमाइश गीत एक्सप्रेस। तो कार्यक्रम में पहला मेल शामिल कर रहे हैं हम सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ का। भेजने वाले श्रोता टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से ईमेल भेजा है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। महसोल सीतामढ़ी वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल से अक्रम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू बेगम, इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकाहत परवीन। ऑरेंज सिटी नागपुर से संदेश भेजा है बिट्टल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव ने। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, स्टेशन रोड जमानिया से SP जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और ओम कुमार सुरलकर। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से ये मेल हमें प्रेषित किया है गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और सुशील येले ने। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से रणजीत कोरगांवकर, कंचन कोरगांवकर, सृष्टि कोरगांवकर, समरजीत कोरगांवकर का भी मेल हमें मिला है। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। कुटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं आप सभी की पसंद पर नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ गीत, संगीत खयाम का, आवाज अनवर और सुलक्षणा पंडित की, फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई।

तो निश्चित तौर पर मौसम तो सुहाना हुआ है ना दोस्तों। तो जब मौसम अच्छा होता है तो मन भी तो अच्छा हो जाता है, और जो गर्मी से जो

चिड़चिड़ाहट हो रही थी वो ख़त्म हो रही है और लगता है कि मानसून आ रहा है या आ गया है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं और यही दुआ भी करेंगे कि बारिश जम के हो, क्योंकि बारिश की बूंदों की ज़रूरत सबको होती है, क्या आदमी क्या पशु पक्षी, सभी इंतज़ार करते हैं बारिश की बूंदों का। और जब कोई भी चीज़ इंतज़ार के बाद मिलती है ना, तो उसका मज़ा और बढ़ जाता है। तो काफ़ी गर्मी के बाद जब राहत की बूंदें हमारे पास आईं तो मन खिल गया और हम भी खिल गए, आप भी खिल गए, लोग खिल गए, वातावरण खिल गया। और चल देखते हैं मैं अगला मेल किसने भेजा है। ये मेल हमें भेजा है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, संतोष काले जी, गजानन सालोकर जी, सुरेश भीसे पाटिल, देवेंद्र भटकर जी, प्रकाश दांडगे, तेलंगाना भोंगेर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फरजान, फरहान, समेरा, अजीन और गुड़िया, सादुलशहर राजस्थान से राम कुमार रिवार्ड, चंद्रकला रिवार्ड, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश का भी मेल हमें मिला है। ग्राम पंचायत भटेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना, लदावली जिला मुरादाबाद से माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना और अजीत कसाना, आप सभी को हम सुनवा रहे हैं आप सभी की पसंद पर लोफर फिल्म का गीत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज मोहम्मद रफी की।

तो दोस्तों आप मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे और हम भी तो आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपके संदेशों के साथ, यानी आपने जो मेल भेजा है उसमें भी कहीं ना कहीं से मौसम का असर आ रहा है, क्योंकि मौसम वाले गीतों की फरमाइश आपने भी भेजी है। और चलिए देखते हैं अगला गीत किसने सुनना चाहा है, किस श्रोता ने हमें मेल किया है। तो ये मेल किया है रामपुर रामनगर वाराणसी से विनय कुमार सधवानी, पूजा सधवानी, डॉली सधवानी, विवान सधवानी, रंजीत सधवानी, हिमांशु सधवानी, सुधांशु सधवानी, हुमांशी सधवानी, ईशान सधवानी। और ये से मेल हम भेजा है गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारसा, विशाल बारसा, विकास बारसा, रोशनी बारसा, शगुन बारसा। सिद्धार्थपुर नगर दरियापुर बाबली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अवंतिका येले। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना ने कृष्णा पार्क दिल्ली से संदेश भेजा है और कनॉट प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम का भी संदेश हमें मिला है। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, धमदा ग्राम

0: सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल ने भी मेल हमें भेजा है। अपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल मनवर और बेबी प्रियांशी। और भी संदेश हम लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर सर्च कर रहे हैं। कुछ संदेश बहुत से ऐसे हैं जो कि लगातार एक साथ एक ही श्रोता ने कई संदेश भेज रखा है, तो उसमें से हमें अलग करना पड़ रहा है। ये संदेश भेजा है गिर्रा पलाड़ी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू, आशीष और कपिल साहू। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहो जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल, पटेल नगर मुगलसराय से शशि सिंह, आकाश सिंह और आस्था सिंह का भी मेल हमें मिला है। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने संदेश भेजा है दतरंगी से। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। तो आप सभी को हम सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, बॉबी फिल्म का ये गीत है और ये देखिए क्या कहना चाहते हैं।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: पहले तुम लेकिन हमें भी कुछ कहना है आपसे। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी कुछ कहना है। कहना ये है कि मौसम तो इतना अच्छा हो गया है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। जी हाँ, फायदा का मतलब हम आज यदि वृक्षारोपण करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर जो इस पर इतना विलंब हुआ मानसून आने में ना, आगे से मानसून सही होने की संभावना हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मौसम अच्छा हुआ, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। हम यदि अभी पौधरोपण करेंगे, अभी वृक्षारोपण करेंगे और पौधा लगाएंगे, लोगों को बताएंगे कि नहीं हम अपने पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे, तो मुझे तो यही कहना, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तो आप मेरा साथ देंगे ना? मैं भी पेड़ लगाऊंगा, मैंने भी लगा रखा है, और भी लगाने के लिए आप प्रॉमिस कीजिए, तभी हम आपके मेल शामिल करेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ हैं इस मुहिम में और अधिक से अधिक पेड़ों को हम लगाएंगे, बस यही कहना था मुझे। और कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: श्रोताओ, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है संक्रामक रोगों से बचाओ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर संजय चौरसिया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: अंतराल के बाद आप सभी का फिर स्वागत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM में 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। तो कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अंधा कानून।

उन फिल्म से और इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा आप सभी श्रोताओं ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने ईमेल भेजा है। रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा ने टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का भी मेल हमें मिला है। इन्होंने लिखा है, खुश रहो और खुशियां बांटो। निश्चित तौर पर ये बात बहुत मायने रखती है। जब हम खुश रहेंगे तभी खुशियां बांटेंगे, और खुश रहने के लिए बहाने ढूंढिए। जो भी छोटी खुशी भी मिले उसे ले लीजिए। अगला संदेश हमें भेजा है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ने। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। लालगंज रायबरेली से केके साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, ऋषु, इला और विनस। चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुषी और अनुष्का का भी मेल हमें प्राप्त हुआ है। अदार नानगढ़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा ने भी मेल हमें प्रेषित किया है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, योशी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। मुबारकपुर उचिता की आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना और हसीना दिलशाद। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह और इनकी प्यारी कोको रानी। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर अंधा कानून फिल्म का गीत। आशा भोसले और SP बालसुब्रमण्यम की आवाज, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो इस मेल के पहले हम आपको बता रहे थे अपने दिल का भाव कि मुझे क्या कहना था। मुझे यही कहना था कि हम पौधे लगाने का संकल्प लेंगे और जब वृक्ष लगेंगे पर्यावरण हमारे अनुकूल होगा और तो मौसम और भी सुहाना हो जाएगा, और जब मौसम सुहाना होगा तो निश्चित तौर पर आप ये गीत जरूर गुनगुनाएंगे।

भाई जब मौसम अच्छा होगा तो दिल भी अच्छा होगा और प्यार तो होना ही है। तो मौसम अच्छा होने के मैंने आपको उपाय भी बताए, मौसम अच्छा करने के उपाय हमने बताए, तो उम्मीद है कि आप उन उपायों को ज़रूर लागू करेंगे। और पखवाड़ा भी चल रहा है कि हम पेड़ लगाएं, देश को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, तो इससे अच्छा मौका और कुछ भी नहीं हो सकता है। आप जाइए, अगर अपने बगल में नर्सरी होगी, नर्सरी से पौधे लाइए। आप गमले में ही पौधे लगाए, जगह ना हो लेकिन पौधे जरूर लगाइए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किसने अगला मेल हमें भेजा है। लोरमी छछेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। अनारकली बाजार जगरावां से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव का भी मेल हमें मिला है। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जावल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी का भी मेल हमें मिला है। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहो जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद, अजरा तवस्सुम। रायपुर अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर, पुन्नू वडतकर। पद्मा टाकिश नेपानगर मध्य प्रदेश से

रतन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू,

उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, तासु, अर्णव, आनंद, सत्यम, आनंद ने ये संदेश भेजा है पाकुड़ झारखंड से, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समल डील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। लंका वाराणसी से ये मेल हमें भेजा है रवि अग्रवाल और ज्योति अग्रवाल ने। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं कमल अमरोही का लिखा हुआ गीत, संगीत गुलाम मोहम्मद का, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम पाकीज़ा।

इस सुहाने मौसम में फरमाइशी गीत एक्सप्रेस इस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। अगला मेल हमें भेजा है कुंभार गली कोल गांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुंभार ने। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से ईमेल हमें भेजा है राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी ने। गंडई टिकरी पारा छत्तीसगढ़ से जागेश्वर देवांगन, श्रीमती कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार देवांगन, श्रीमती जयश्री देवांगन, ऋचा ऋषभ देवांगन। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवयम जैन और आदि जैन। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी और अनुराग मोहन। करोसी भाषा रायपुर छत्तीसगढ़ से मेल हमें भेजा है पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू ने। तो कार्यक्रम में हम आपकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं जानवर फिल्म का गीत, शब्द रचना समीर की, संगीत आनंद मिलिंद का, आवाज अलका यानिक और मना रुदास की। तो मौसम तो सुहाना हुआ है तो मौसम के साथ बदलाव भी होता है। देखिए मौसम बदला, यानी पहले जाड़ा था, फिर गर्मी आई और इसके बाद अब बारिश का मौसम आया। तो बदलाव तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन बदलाव सकारात्मक होना चाहिए।

कार्यक्रम का आखिर गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनशान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मेफ्री नवाज, बेबी चाहत और सादिया। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू का भी संदेश में मिला है। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार सुरलकर। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरया, जालंधर। पंजाब से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भारत मक्कड़। तो ये होने जा रहा है कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म तकदीर से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज लता मंगेशकर की। तो आपके रेडियो सेट पर जा रहा है तकदीर फिल्म का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मौसम की तरह खुश रहिए, अपने मिजाज को खुश रखिए। इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइश गीत एक्सप्रेस। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: नंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
0: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
0: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई।

0: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
1: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
1: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
0: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
1: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
1: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
0: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की।
1: जी,
0: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात।
1: जी
0: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था।
1: जी अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
0: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने।
1: जी
0: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही।
1: जी
0: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
1: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
0: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
1: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
0: क्यों?
1: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
1: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी।
1: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं। लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों

0: आनंद मनाते।
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को।

मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं।

0: ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?

0: चित्र,
1: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
1: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
1: आइए।
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
0: अरे इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
0: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
1: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
1: हाँ।
3: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
1: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
1: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
0: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
1: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
0: वाकई कमाल है।
1: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
0: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
1: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
1: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
0: सच?
2: धन्यवाद।
4: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
5: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं, एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
6: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 241.5 शेयर मीटर, यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, उसके पहले ये संदेश।
10: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
11: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
10: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
11: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
10: बुकिंग है तो संपर्क करें
12: 0542227658,
11: 0542227658।
9: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं डॉक्टर रागनी सरना। इनके स्वर में पहले सुनिए तुलसीदास की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं डॉक्टर रागनी सरना। कार्यक्रम के अंत में इनके स्वर में सुनिए महादेवी वर्मा की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थीं डॉक्टर रागिनी सरना। श्रोता, हम आपको याद दिला दें, इनके गायक गीत आप रात 8 बजे सुगम संगीत के एक दूसरे कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित शारदा सहाय का एकल तबला वादन रूपक ताल में। आपके साथ हारमोनियम पर लहरा दिया है त्रिलोकीनाथ मिश्र ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित शारदा सहाय का एकल तबला वादन रूपक ताल में। आपके साथ हारमोनियम पर लहरा दिया था त्रिलोकीनाथ मिश्र ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।

0: मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का 1 बजने को है, कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया

0: लिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाज रोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रिया देवी, पति का नाम अंगद गिरी, ये ग्राम बिशनपुरा थाना शहाबगंज जनपद चंदौली की रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। प्रिया देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र 23 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है, इनके बाल लंबे और काले हैं। प्रिया देवी के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। समीर पुत्र मुकेश वर्मा, निवासी वार्ड नंबर 12, दुर्गा नगर थाना चकिया जनपद चंदौली, कहीं लापता हैं। समीर के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 17 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई 5 फीट 7 इंच, इकहरा बदन है, चेहरा गोल है, इनके दाहिने पैर के घुटने पर कटे का निशान है। समीर के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। एक और भी सूचना यहीं से प्राप्त हुई है। तारा देवी, पत्नी लवकुश राम, ये ग्राम फुल

परिया थाना बलुआ जनपद चंदौली की रहने वाली हैं। ये कहीं लापता हो गई हैं। तारा देवी की उम्र है 35 वर्ष, लंबाई 4 फुट 6 इंच, रंग गोरा, दोहरा मजबूत शरीर है, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुई थी उस समय आसमानी रंग की साड़ी पहने हुए थी। तारा देवी के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी डॉक्टर रागनी सरना। अंग्रेजी कार्यक्रम में शाम 7 बजे पॉपुलेशन ग्रोथ अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी विषय पर प्रोफेसर अलका सिंह से आकांक्षा सिंह की बातचीत होगी शाम 7 बजे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में खरीफ में सब्जियों का हानिकारक कीटों से बचाव विषय पर डॉक्टर कुलदीप सिंह से बातचीत होगी। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत कलाकार होंगे देवता दीन सरोज। इनका गाया लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना, मार्गदर्शन में माइनिंग के क्षेत्र में करियर की अवसर विषय पर हेमंत कुमार से बातचीत और फिल्म संगीत। दिन 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में चर्चा, गीत संगीत और जायका आप सुन पाएंगे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर कॉम्पियट कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में शाम 5 बजे, शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर रस रंग में और रात 8:15 पर रस माधुरी कार्यक्रम में। कार्यक्रम विवरण में भी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे लखनऊ केंद्र से संप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वज़ीर-आला ने कौमी सतह पर मुंतखब होने वाले क्लीन एंड ग्रीन स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को भी एजाज से नवाजा। वज़ीर-आला आज चित्रकूट और मानिकपुर असेंबली हलकों में 951 करोड़ रुपए के 124 अवामी बहबूद के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से ज्यादा के 111 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली हुकूमत ने अपने काम करने के अंदाज से तरक्की को तेज किया है। वज़ीर-आला ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपए के 99 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। तकरीब के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों में चेक और सर्टिफिकेट तकसीम किए। वज़ीर-आला ने कहा कि हुकूमत ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर पूर्वांचल को तरक्की से जोड़ा है। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मिश्रा की सदारत में कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग हुई। मीटिंग में खरीफ सीजन की पेशरफ्त और मईशत के दीगर शोबों पर अलनीनो के मुमकिन असरात की रोशनी में की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जाए और मानसून या ताखिर से होने वाले मानसून के असरात का अंदाज़ा रियासतों के साथ मिलकर उन अजला पर किया जाए जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसलाही इकदाम किए जा सकें। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हसास अजला में पीने के पानी के मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अवलिन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। इसका मकसद 20,000 से ज़्यादा ज़रई कारोबारी अफराद और 20 लाख किसानों को बाख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए ज़रई तरक्की, खुशहाल गाँव और खुशहाल किसानों की ज़रूरत पर जोर दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि मंदिर में चढ़ावे के गबन के बावजूद यहां आने वाले अकीदतमंदों की तादाद और उनकी जोश व खरोश में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस मामले में इंसाफ किया जाएगा और मुजरिमों को सजा दी जाएगी। इस मामले में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साबिक जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने एक खत में कहा कि वो SIT की हतमी रिपोर्ट पेश करने के बाद अपने खिलाफ तमाम इल्जाम का जवाब देंगे। इस दरमियान राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के 3 मुलजमीन का पुलिस रिमांड शुरू हो गया है। पुलिस उन्हें जेल से पुलिस लाइंस ले गई, वहां तीनों मुलजमीन का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। इसके बाद पुलिस नकदी और जेवरात बरामद करने की कोशिश करेगी जिनकी उन्होंने शनाख्त की थी। रियासती वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल मिर्ज़ापुर में एक मल्टीपर्पज़ खाद, बीज और तौसी मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ज़राअत ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को जदीद वसायल और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए मुसलसल काम कर रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। उसके पहले ये संदेश।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं।

0: जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5,00,000 के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1,25,00,000 रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: जिंदगी की राहों में मुस्कुराहटों के फूल खिलाते रहिए, हर नए सवेरे को उम्मीदों से सजाते रहिए। इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ हमसे ये प्यारी सी दोस्ती निभाते रहिए। जी हाँ सखियों, आपके साथ से ही तो हमारा ये कार्यक्रम है। तो गृहलक्ष्मी सुनने वाली सभी सखियों को निशा
1: और सुखदा का
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों, हम ज्यादातर महिलाएं अपने घर गृहस्थी और जिम्मेदारियों में इतनी उलझी हुई होती है ना कि हम सब अपने बारे में तो विचार ही नहीं कर पाती। हमारे सपने बस सपने ही बन गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी सारी जिम्मेदारियों से परे आपकी एक और भी जिम्मेदारी है।
0: क्या
1: वो क्या? वो जिम्मेदारी है आपकी अपने प्रति, ठीक है?
0: अपनी सेहत के प्रति, है ना?
1: हाँ, अपने सपनों के प्रति, अपनी सेहत के प्रति, अपने सपनों को सच करने के लिए उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। हर एक दिन छोटा कदम उठाएं, खुद पर भरोसा रखें और अपनी गलतियों से ही सीखें और आगे बढ़ें।
0: और कहते हैं ना सुखदा कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही आते हैं ना।
1: बिल्कुल
0: तो हर किसी की आंखों में कोई ना कोई सपना जरूर होता है, चाहे हम हो, आप हो, या हमारी जो सखियां हैं वो हो, है ना? तो कोई ऊंचाइयों को छूना चाहता है, कोई अपने परिवार का सहारा बनना चाहता है, तो कोई समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। लेकिन सखियों, केवल सपना देखना ही काफी नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की भी जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, अगर आप अपने जीवन में शांति और सुकून चाहते हैं ना, तो संघर्ष के समय दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदल लें। याद रखें, पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज़्यादा आसान होता है ना? और साफ शब्दों में अगर कहें तो जो मिले उसमें खुश रहें और हर दिन अच्छा करने की कोशिश करें और निरंतर आगे बढ़ते जाएं।
0: और सबसे पहले तो अपने लक्ष्य को जान लीजिए कि जब क्योंकि जब मंजिल तय होगी तभी तो रास्ता भी दिखाई देगा, है ना?
1: बिल्कुल
0: और हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचिए कि आप वो कैसे पूरा कर सकते हैं, है ना? और सबसे बड़ी बात सखियों ये भी है कि उसके लिए सकारात्मक होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना निशा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है।
0: बिल्कुल
1: भाग्य भी उनका हिस्सा देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। समझनी है तो जिंदगी को पीछे देखो, है ना, और जीनी है तो जिंदगी को आगे से देखो।
0: अच्छा, कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि बहुत देर हो चुकी
1: हाँ।
0: है, अब क्या हो सकता है ना? तो कभी देर नहीं होती है ना?
1: बिल्कुल
0: सपने
1: नहीं।
0: कभी भी उम्र, परिस्थितियों या संसाधनों के मोहताज नहीं होते। हमेशा अपने अंदर छिपी प्रतिभा पर भरोसा रखिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि जैसा तुमने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो हर समय जो जिंदगी है हमें कुछ न कुछ सिखाती ही रहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना ये इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। और सखियों, इस सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर।

0: ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और भी बढ़ती जाती है।
1: बिल्कुल बढ़ जाती है। और पता है हमारे कार्यक्रम की मतलब जो शोभा है वो और भी बढ़ जाती है जब हम अपनी बातों के साथ एक कोई सुरीला सा गीत अपने सखियों को सुना देते हैं। तो अपने सखियों को ये गीत सुना देते हैं।

0: सखियों, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए चलाया जाता है और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें समान अवसर देना है।
1: बिल्कुल, और इसका एक और उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं का विकास करना है, जिसके लिए बेहतर पूरक पोषक, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और मुफ्त शिक्षा जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, है ना?
0: अच्छा सुधा, अच्छा कभी आप ऐसे ही कोई विज्ञापन देख लेती हैं या कहीं डिस्काउंट मिल रहा होता है तो क्या आप खरीदारी करने पहुंच जाती हैं?
1: भाई, मन तो बहुत करता है, लेकिन सच्ची बताऊँ निशा, तो दिमाग ये कहता है कि पता नहीं चीजें सही हैं या नहीं सही हैं।
0: हाँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि हम डिस्काउंट के चक्कर में ले तो लेते हैं सामान, लेकिन वो कभी हमारे काम की नहीं होती है ना, और कभी कभी खराब सामान भी मिल जाता है।
1: खास तौर से कहीं अगर कपड़ों की सेल लगी हुई हो तो हम तो
0: भाई
1: पहले पहुंचेंगे।
0: महिलाएं पहले पहुंच जाती हैं, है ना? तो क्या हमारी सखियां भी विज्ञापन देख करके खरीदारी करती हैं? अगर सखियां आप ऐसा करती हैं तो अपनी बातें और अपने सुझाव हमें जरूर बताइए, और इसके लिए आप हमें फोन कर सकती हैं 10 तारीख को 11 से 11:30 बजे के बीच में, और हमारा फोन नंबर है 0542-222-1050।
1: और हमारा दूसरा नंबर है 222-1052। तो सखियों, हमें फोन करना ना भूलिएगा, अपने सुझाव हमें जरूर ही बताइएगा। निशा,
0: हाँ,
1: देखो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा
0: अरे
1: है
0: बहुत, क्योंकि कभी कभी
1: ना?
0: बारिश इतनी अच्छी हो रही है ना, अभी रास्ते में भी हम आ रहे थे ना तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: भाई, गर्मा गर्म चाय और पकोड़े
0: हाँ,
1: उसी का
0: क्योंकि
1: सीजन
0: जब भी
1: है।
0: बारिश होती है ना तो बस अगर घर में हम होते हैं तो मन करता है कि पकौड़े मिल जाए, उसके साथ चाय मिल जाए, तो फिर क्या बात हो जाए, है ना?
1: भाई कह दी
0: लेकिन आप
1: तो
0: पकौड़े की बात क्यों कर रही हैं?
1: हाँ, क्योंकि
0: अभी
1: आज
0: यहाँ पे तो भाई, अभी तो हम लोग यहाँ हैं,
1: स्टूडियो में
0: लेकिन
1: है।
0: इसके बाद आपको तब तो खिलाना पड़ेगा, आपने नाम लिया है।
1: बिल्कुल खिलाऊंगी, और आज तो मैं आपको और अपनी सखियों को भी स्वीट कॉर्न के पकोड़े बताऊंगी।
0: स्वीट कॉर्न के पकौड़े।
1: भाई देखो, आलू के
0: हाँ
1: पकोड़े, प्याज के पकोड़े तो हर कोई बनाता है ना?
0: हाँ
1: तो कुछ नई डिश इस्तेमाल करनी चाहिए, नई डिश ट्राई करनी चाहिए अपने को,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: करनी चाहिए।
1: तो आज हम अपनी सखियों को बताएंगे स्वीट कॉर्न के गर्मा गर्म पकौड़े। तो इसके लिए सामग्री नोट कर लीजिए सखियों। स्वीट कॉर्न 2 कप, बेसन 3 से 4 चम्मच बाइनिंग के लिए, चावल का आटा 1 बड़ा चम्मच, प्याज 1 बारीक कटी हुई, हरी मिर्च 2 या 3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 छोटा टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, हरी धनिया बारीक कटा हुआ, मसाले स्वादानुसार आधा कप, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन और तलने के लिए तेल।
0: तो सबसे पहले सखियों, इसको बनाने के लिए आप एक बड़े से बर्तन में उबले हुए जो स्वीट कॉर्न है, बेसन है, चावल का आटा, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरी धनिया, हल्दी, मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक, ये जितने भी मिक्सचर आपने रखे थे हैं उसे अच्छे से मिला लीजिए। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके एक गाढ़ा घोल तैयार कर लीजिए। देखिएगा कि वो पतला ना हो जाए, क्योंकि वो फिर अच्छे से उसको पकड़ नहीं पाएगा और वो गोल नहीं बन पाएगा।
1: निशा, एक चीज और भी मैं बता दूं यहाँ पे।
0: वो क्या?
1: जैसे कि आपने बताया कि इन सारी सामग्रियों को एक बर्तन में डाल के अच्छे से मिक्स कर लें,
0: हाँ
1: लेकिन अगर कुछ सखियां हमारी ये चाहती हैं कि स्वीट कॉर्न को मिक्सी के जार में,
0: हाँ
1: ठीक है, थोड़ा सा दरदरा पीस लें तो भी अच्छे से वो घुल जाता है, मतलब उसमें सारे मसाले अच्छे से मिल जाते हैं,
0: हाँ
1: है ना? वैसे भी कर
0: अगर
1: सकती
0: इस
1: हैं।
0: तरह से तरीके से भी बना सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और फिर उसके बाद जो घोल आपने तैयार किया है उसे अलग रख लीजिए, और अपनी जो कढ़ाई है उसको गर्म कर लीजिए। उसमें गर्म तेल में ये जो आपने

0: मिक्सचर बनाया है उसको छोटी छोटी उसकी लोई बना करके और तेल में डाल दीजिए, उसको सुनहरा होने तक भून लीजिए।
1: मध्यम आंच पर, है ना?
0: क्योंकि अगर हम तेज कर देंगे तो वो जल भी जाएगा, है ना,
1: और
0: और
1: अंदर से,
0: सारा स्वाद खराब हो
1: हाँ,
0: जाएगा।
1: अंदर से कच्चा रह जाएगा,
0: हाँ,
1: है ना?
0: तो अब इस जब इस जब ये भून जाए तो आप इसे हरी चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ, है ना, आप
1: बिल्कुल
0: परोस सकती हैं, खुद भी खा सकती हैं, अपने परिवार को भी साथ में खिलाइए।
1: भाई, वाह, मजा आ गया। और गर्मा गर्म
0: लेकिन
1: पकौड़े
0: भूलेगा नहीं, आपको खिलाना है अभी।
1: बिल्कुल खिलाऊंगी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगी,
0: हाँ
1: है ना? तो सखियो, देखिए, हम लोग बातें भी कर रहे हैं, इतनी सारी बातें भी कर ली।
0: हाँ तो अभी और भी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। तो हम चलते हैं।

0: नहीं कल,
1: क्यों क्यों
0: आज नहीं कल,
1: ये तो एक बहाना है,
0: वापस घर भी जाना है।
2: बिल्कुल अभी नहीं जाना है हम लोगों को, सुविधा है ना। अभी बहुत सारी बातें करनी है अपने सखियों से। और अच्छा, कभी कभी सुविधा ऐसा होता है कि अचानक से कोई जीवन में परेशानी आ जाती है, ऐसा होता है ना,
3: और हम लोग घबरा जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। हमेशा ये लगता है कि किससे पूछें, ये समस्या है वो समस्या है। तो सखियों, घबराएं बिल्कुल नहीं, बल्कि सजगता के साथ उस समस्या का समाधान करें, है ना। जैसे सजगता से किसी भी समस्या का समाधान करना, उसे जड़ से खत्म करने का सबसे सही तरीका है शांत और केंद्रित दिमाग से स्थिति को समझने से, और सही समय पर सही कदम उठाया जा सकता है।
2: बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी होती है ना कि जब भी कोई ऐसी परेशानी आती है ना, तो कभी कभी हम घबरा जाते हैं। अगर घबरा जाते हैं तो क्या होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर हम अच्छे से बैठ करके सोचें कि आखिर इसका समाधान क्या, कैसे हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, तो वो जो बड़ी से बड़ी जो कठिनाई होती है ना, वो भी छोटी हो जाती है।
3: बिल्कुल निशा, इससे पहले मैं ये कहूंगी अपनी सखियों को कि पहले समस्या क्या है उसको पहचाने, है ना, उसकी जड़ तक जाइए, क्या है ये समस्या, इसे स्पष्ट रूप से समझें ताकि इसके वास्तविक कारणों का पता चल सके और आप उसे आसानी से सुलझा सकें।
2: बिल्कुल,
3: है ना। शांत दिमाग से, घबराहट में नहीं, शांत दिमाग से। घबराहट में जैसे गलत फैसले हो जाते हैं, अगर हम घबराए हुए होते हैं तुरंत, अगर ऐसा नहीं वैसा कर दो, तो इसलिए शांति से सोचें, इसलिए कुछ पल रुकें और लंबी सांसें लें। समस्या को हल करने के सभी संभावित तरीके एक डायरी में लिखें।
2: हाँ, अच्छा एक चीज और भी कर सकते हैं।
3: क्या?
2: जैसे कि ना, अगर जैसे एग्जाम भी रहता है ना, बच्चों का एग्जाम होता है, तो हम या कोई भी ऐसा कुछ भी होता है घर में, तो बहुत तनाव हो जाता है। एग्जाम से पहले भी जो बच्चे होते हैं ना, तनाव ले लेते हैं। तो ऐसे में क्या है ना कि उनको अगर वो अच्छे से, पहली बात

0: तो तनाव इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं। अगर हम उस
1: हाँ
0: बात का प्रेशर ही ना लें तो वो परेशानी ही नहीं लगेगी, है ना।
1: तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता ही है, कहीं ना कहीं छिपा होता है, बस आपको उसको ढूंढना पड़ता है कि हम इसे जड़ से कैसे खत्म करें। बस घबराइए नहीं, शांति से लंबी लंबी सांसें लीजिए और आराम से उस समस्या का समाधान ढूंढिए कि क्या हो सकता है।
0: अच्छा सुखदा, सजग व्यक्ति जो होता है ना, वो हर समस्या को अवसर की तरह देखता है
1: बिल्कुल।
0: और वो सोचता है कि इस अनुभव से क्या सीखा जा सकता है। असफलता जो होती है उसे कभी निराश नहीं कर सकती, है ना, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और यही सोच जो होती है ना, वो हमारे जीवन को मजबूत बनाती है, सफल बनाती है।
1: बिल्कुल। तो सखी

0: हमारे जीवन को मजबूत बनाती है, सफल बनाती है।
1: बिल्कुल। तो सखियों, कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि जो हमारी बहनें हैं वो छोटी छोटी बातों पे जो घबरा जाती हैं, या कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो घबराती नहीं हैं, तुरंत उस समस्या का समाधान निकाल लेती हैं अपने तरीके से। तो अपने ही तरीके से निकालिए, लेकिन सजगता के साथ निकालिए। और समस्या कोई भी होती है, चाहे वो बड़ी समस्या हो छोटी समस्या हो, उसे अपने परिवार के साथ साझा कीजिए। परिवार और दोस्तों के साथ साझा किए हुए किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं हम, है ना?
0: बिल्कुल सुलझा सकते हैं। और अगर हम जो हमारे अनुभव होते हैं, कभी कभी होता है ना कि हमारे घर में बहुत सारे अनुभवी लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो काफी कुछ देख चुके होते हैं, है ना? तो अगर हम उनके पास बैठे, उनसे बातें करें, तो उनसे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सलाह हमें मिल सकते हैं, है ना?
1: बिल्कुल। तो अब जैसे कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि किससे बताएं फालतू में, अगर घर वालों से बताएंगे तो घर वाले चिढ़ेंगे डांटेंगे। तो इन सबसे परे आप ये सोचिए कि हम उन्हें बता के अपना मन हल्का कर रहे हैं। तो अपनी समस्याओं को ज़रूर से ज़रूर साझा कीजिए, और बड़े बुजुर्ग जो हमें सलाह देंगे ना, उनको ज़रूर मानिए, क्योंकि कहते हैं ना कि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, है ना?
0: और हमारा परिवार ही तो है, वो हमारे अपने हैं। अगर हम अपनों से नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे, है ना?
1: बिल्कुल। तो कहते हैं कि कोई भी बात होती है, कोई भी छोटी बात हो या बड़ी बात हो, सबसे कहना, और दोस्तों से कहिए। अगर आप परिवार में किसी से नहीं कह पा रहे तो अपने एक खास दोस्त से कहिए, ठीक है?
0: बिल्कुल।
1: तो किसी से भी अपने मन की बात कहिए, जिससे मन की बात कहने से आपका दिल हल्का हो जाता है और चीज़ें अपने आप रास्ते पर आ जाती हैं, संभल जाती हैं, है ना? तो चलते चलते हम अपनी सखियों को और अच्छे से सुंदर से ये गीत भी सुनाते चलते हैं।
0: बिल्कुल।

0: कार्यक्रम होने वाला है जिसका विषय है, क्या आप भी विज्ञापन देखकर खरीदारी करती हैं? तो अपने सुझाव आप हमें जरूर फोन करेंगी,
1: और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये भी हमें जरूर
0: बिल्कुल।
1: बताइएगा।
0: और फोन करने का समय है 11 से 11:30 के बीच में, और हमारा फोन नंबर है 0542-222-1050, और हमारा दूसरा फोन नंबर है,
1: 222-1052।
0: बिल्कुल। तो इसी के साथ अपने,
1: और सुगदा एक चीज और भी है, अपनी सखियों को बता दें कि बरसात हो रही है, बारिश हो रही है ना, तो ऐसे में अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्योंकि जब हम निकल रहे हैं तो छाता लेकर के आप निकलिए, और ऐसे भी क्या होता है ना, स्किन पे अपने स्किन का भी ख्याल रखें आप, है ना। और कभी कभी अचानक से धूप भी निकल जा रही है, गर्मी पड़ने लग रही है, तो इसका भी ख्याल रखिए। और अगर रास्ते में कोई चाट पकौड़ा मिल जाता है तो कहीं मत खाने लगी है ना, वो घर पे ही जाकर के बना के खाइए।
0: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि बाहर की जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा,
1: तली भुनी हुसी होती हैं, या बाहर की तो बाहर की होती हैं भाई, हम घर पे अच्छे से उसको बना
0: घर
1: के
0: पे तो
1: खाएंगे।
0: शुद्धता से बनाई जा सकती है ना।
1: तो अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और सखियों आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप इस मौसम को एंजॉय कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही,
0: और अपनी रेडियो दोस्त सुखदा
1: और
0: और
1: निशा को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सखियों के साथ, सखियों के बाद, सखियों के जज्बात, गृह लक्ष्मी।

0: तो सखियो अब हम भी चलते हैं, लेकिन चलने से पहले, जाने से पहले कुछ जरूरी बात भी बता दे अपनी सखियों को।
1: याद दिला दें।
0: हाँ बिल्कुल, याद दिला दे कि सखियों आने वाली 10 तारीख को हमारा एक

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर।

अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं देवता दीन सरोज। इनके स्वर में पहले सुनिए ये निर्गुण।

लोक संगीत में आज के कलाकार थे देवता दीन सरोज। इनका गाया लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। विनम्र व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, पराजित वे होते हैं जो विनम्रता स्वीकार नहीं करते। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने को हैं। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोताओं कीजिए कुछ पलों का इंतजार और सुनिए समाचार।

0: headquarters in Bahrain and the Al El Salem Air Base in Kuwait. Iranian media also quoted an IRGC spokesperson as saying that the country's air defense systems had shot down a U.S. MQ-9 drone over Bushehr province. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. Global crude oil prices rose more than 2% today as renewed hostilities between the United States and Iran threatened to shatter the fragile ceasefire that had brought some relief to global energy markets. Brent crude was trading nearly 2.3% up at $75.87 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% up at $71.96 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% down in the afternoon session today amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. The Sensex plunged 590 points to 77,591, while the Nifty shed 185 points to 24,213 when reports last came in. And in football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in third India-Australia annual summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of U.S. strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beats Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं

0: भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
0: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर

रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार तीन अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वी के बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है।

0: की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। पांच लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइना चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर रहा। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न।

0: तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का
2: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कॉम्पेयर्ड प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत।
1: कुछ बातें कुछ गीत के सफर के साथ एक बार और मुखातिब है आपसे सना सलीम। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो रूह बोलने लगती है, और जब रूह बोलती है तो उसे हम नृत्य यानी डांस कहते हैं। कुछ बातें कुछ गीत में आज हम बात करेंगे उस कला की जो बिन कहे दिल की हर बात कह देती है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में अपनी आत्मा को थिरकने देते हैं, कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं और कुछ धमाकेदार गीतों के साथ माहौल को खुशनुमा बना देते हैं।
3: Dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, d

वाह क्या बात है, ये गाना सुनते ही यकीनन आप में से कई लोगों के पैर थिरकने लगे होंगे। तो दोस्तों 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस क्यों मनाया जाता है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो ये दिन इसलिए खास है क्योंकि ये डांस को एक सार्वभौमिक कला के रूप में बढ़ावा देता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं के साथ साथ संस्कृति और दर्शाने और तनाव को दूर करने का एक बेहतरीन जरिया भी है।

आपको पता है डांस करने की अनगिनत फायदे हैं। ये न सिर्फ आपको अंदर से खुशी देता है बल्कि ये लोगों को एक साथ भी लाता है। डांस तो दोस्तों शादी हो, पार्टी हो या फिर अकेले डांस करना, हर जगह ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में लोक नृत्यों की कितनी विविधता है? बीहू, भांगड़ा, गरबा, लावड़ी, कथक और न जाने कितने फॉर्म्स हैं जो हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं।

चलिए अब कुछ बॉलीवुड डांसरों की बात भी कर लेते हैं। माधुरी दीक्षित का डांस हो या ऋतिक रोशन के मूव्स या फिर गोविंदा का वो सदाबहार अंदाज। अगला गाना डेडिकेट कर रही हूँ उन सभी को जो आज के दिन किसी न किसी पार्टी में ठुमका लगा रहे हैं।

देखिए, डांस का मतलब सिर्फ सही स्टेप्स करना नहीं होता है, बल्कि दिल से उस धुन को महसूस करना होता है। मेरा आप सभी को एक ही मैसेज है कि डांस कीजिए, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। अपनी खुशी के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए डांस कीजिए।

आज के कुछ बातें कुछ गीत के इस स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और बातें और कुछ नए गीतों के साथ। तब तक थिरकते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ।

0: जाने।
1: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कॉम्पियर्ड प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
2: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा।
3: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही आज की हमारी पहली सभा। शाम 5 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

यशोदास और हेमंती शुक्ला की आवाजों में आप सुन रहे थे चश्मे बद्दोर फिल्म का गीत। गीत को लिखा था इंदु जैन ने और तर्ज बनाई थी राज कमल ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म चितचोर से। आवाजें यशोदास और हेमलता की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

चितचोर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: कहते हैं एक मुस्कुराहट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जितनी उसे बांटते हैं उतनी ही बढ़ती आती है। तो चलिए आज की शुरुआत भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ करते हैं।
1: और मुस्कुराने की एक वजह हमें हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, बस हमें उसे देखना भूल जाते हैं।
0: और वजह पूछेंगे, वो भी कौन सी?
1: वही जो हर सुबह सूरज की पहली किरण बनकर आती है, हवा की ठंडक में महसूस होती है, पेड़ों की हरियाली में झलकती है और चिड़ियों की चहचहाट में सुनाई देती है, वो है प्रकृति।
0: जरा एक पल के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाइए, कहीं पेड़ों की सरसराहट, कहीं पक्षियों की चहचहाहट, कहीं ठंडी हवा का हल्का सा स्पर्श। प्रकृति हर दिन हमसे कुछ न कुछ कहती है, बस हम ही उनकी आवाज सुनना भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपसे कार्यक्रम में जुड़े और हम अपना नाम ही बताना भूल गए। तो
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए सौरव।
1: और मोनिका,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। वैसे सौरभ, जैसा कि हम बात कर रहे थे, तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर मंजिल के पीछे भागते भागते उन छोटी छोटी खूबसूरत चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें सुकून देती है। एक खिलता हुआ फूल, बारिश की पहली बूंद या फिर डूबते सूरज का सुनहरा नजारा, ये सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि जीवन को महसूस करने का एक एहसास भी है।
0: और दोस्तों, ऐसी ही एक खूबसूरत एहसास है हमारी और आपकी दोस्ती। तो हमारी और आपकी दोस्ती के नाम प्रस्तुत है ये गीत।

0: तो दोस्तों, हम मुस्कुराहट की बात कर रहे थे। आप जरा अपनी मुस्कान को थोड़ा और बढ़ा लीजिए। क्योंकि प्रकृति की हर सुबह हमें यही सिखाती है, खिलना है, महकना है और हर हाल में मुस्कराना है। तो आइए आज कुछ पल प्रकृति के नाम करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों यह हमारी सबसे बड़ी मुस्कुराहट की वजह बन सकती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, प्रकृति हमारे यहाँ सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ हवा, निर्मल जल, हरे भरे वन और जैव विविधता से ये सभी हमारे जीवन का आधार है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी मानव जीवन भी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहेगा। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: दोस्तों, आज बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने प्रकृति के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा।

0: सूखा, बाढ़ और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं हमें यह संकेत देती है कि अब समय आ गया है कि हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और ठोस कदम उठाएं।
1: पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत छोटे छोटे प्रयासों से की जा सकती है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और उनकी देखभाल करना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना, बिजली की बचत करना या प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, कचरे का उचित प्रबंधन करना तथा सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का अधिक उपयोग करना, ऐसे सरल उपाय ही जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा मोनी। और दोस्तों याद रखिए, एक पेड़ केवल छाया ही नहीं देता बल्कि वह हमें प्राणवायु भी देता है। पानी की हर बूंद अनमोल है और ऊर्जा की हर बचत भविष्य की सुरक्षा है। यदि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए तो एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भारत का सपना अवश्य साकार हो सकता है।
1: बिल्कुल, आइए आज हम यह संकल्प ले कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करेंगे और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण छोड़ेंगे। यही सच्चे अर्थों में प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान और भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी होगी।
0: याद रखिए, प्रकृति की रक्षा जीवन की सुरक्षा। आइए पर्यावरण संरक्षण को केवल एक अभियान न बनाए बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा भी बनाए।
1: बिल्कुल, एक और बात दोस्तों, स्वस्थ समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव होती है। यदि बच्चे स्वस्थ होंगे तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है, जिसे हम मिशन इंद्रधनुष के नाम से भी जानते हैं।
0: जी हाँ, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य देश के उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सेवाएं पहुंचाना है जो किसी कारणवश नियमित टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं।
1: बिल्कुल, इस अभियान के अंतर्गत पोलियो, खसरा, डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनस, टीबी और हेपेटाइटिस जैसी कई गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक टीके लगाए जाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चा समय पर सभी आवश्यक टीके प्राप्त करे, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी आए और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके।
0: दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष का नाम इंद्रधनुष के साथ रंगों से प्रेरित है जो जीवन की पूर्णता और सुरक्षा का प्रतीक है। इसी प्रकार यह मिशन भी जीवन के हर चरण में सुरक्षा प्रदान करने का संदेश देता है। यह अभियान विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां टीकाकरण की पहुंच कम है या फिर लोग किसी कारणवश स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।
1: इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और बच्चों एवं माताओं का टीकाकरण सुनिश्चित करते हैं। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है जिसमें समाज की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
0: आज के समय में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। यदि प्रत्येक माता पिता समय पर अपने बच्चों का टीकाकरण करवाएं और स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें तो कई जानलेवा बीमारियों को पूरी तरह से रोका जा सकता है। और दोस्तों, बीमारियों से तो हम टीकाकरण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर बचाव कर सकते हैं, लेकिन जब बारिश में भीगने की बात आए तो हम खुद को रोक नहीं पाते। तो चलिए बारिश के इसी माहौल में खुद को सराबोर करते हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
5: 0542227658।
3: ओ
2: 0542227658।
3: लो अभी फोन लगाता हूँ।
2: 0542227658।
6: तो दोस्तों, बारिश में भीगने के बाद याद आया कि चाहे मौसम हो, कोई खास जगह हो या फिर किसी खास के साथ बिताया गया पल, हम उसे तस्वीरों में कैद करना चाहते हैं। तो आइए

0: मार्गदर्शन के इस खास सेगमेंट में सुनते हैं विनय कुमार रावल से अशोक पांडे की ये बातचीत, जिसका विषय है फोटोग्राफी के क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते अवसर।
1: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। और युववाणी के इस खास सेगमेंट मार्गदर्शन में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं विनय कुमार रावल जी। आज मार्गदर्शन सेगमेंट में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है फोटोग्राफी। हम सभी जानते हैं कि ये बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें आज का युवा अपना रोजगार का अवसर तलाश कर रहा है। तो फोटोग्राफी क्या है, किस तरह से इसमें रोजगार के अवसर हैं, क्या खूबियां होनी चाहिए एक फोटोग्राफर के अंदर, किन बातों की उसको समझ होनी चाहिए, यही सारे वो कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनकी आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। विनय कुमार रावल जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। विनय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: श्रोताओं सबसे पहले तो हम बता दें कि विनय कुमार रावल जी बनारस के ही नहीं बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक अच्छे और बड़े फेमस छायाचित्रकार हैं। 4 दशक से अधिक का आपका अनुभव है फोटोग्राफी के क्षेत्र में। तो विनय जी शुरुआत हम इसी से करना चाहेंगे कि आपने फोटोग्राफी कब शुरू की?
2: देखिए, 1980 में, 1980 में मुझे कुछ इसके तरफ रुझान हुआ जब मेरे बड़े भाई साहब नेपाल गए थे और वहाँ से उन्होंने एक छोटा सा 70-75 रुपये का कैमरा हुआ करता था वो लेके आए। तो मुझे लगता था ये नेगेटिव है और इससे कैसे पॉजिटिव बनेगा, क्या होगा। तो मेरे परिवार में कोई इस पहले रहा नहीं फोटोग्राफर, लेकिन चीज़ें बड़ी उस तरह से रोचक लगने लगी। और फिर मैं अपने इंटर और बीकॉम का जो मेरी पढ़ाई चल रही थी उसके दौरान ट्रांजिशन का पीरियड था, तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी और उसमें मैंने एक छोटा सा डिप्लोमा, उसका सर्टिफिकेट कोर्स, वेदर यू कैन से, वो मैंने ज्वाइन किया। दूसरा सर, आपका जो प्रश्न था उसके लिए मैं बोलूँ, एक फोटोग्राफर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसका सेंटिमेंटल होना। अगर उसका हृदय जो है सेंटिमेंटल नहीं है, अगर दूसरों के लिए दुखी नहीं होता है, जहाँ पे दुख है वहाँ दुखी नहीं होता है, और अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा एग्रेसिव प्रवृत्ति का है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए ये लाइन नहीं है, ये विधा नहीं है। क्योंकि
1: फोटोग्राफी का क्षेत्र
2: फोटोग्राफी,
1: में,
2: क्योंकि यह आर्ट है, तो आर्ट में आप कभी भी झगड़ा नहीं कर
1: अच्छा आपने
2: सकते।
1: इसको आर्ट कहा, अभी जब हम लोग बात कर रहे थे
2: जी
1: तो बातचीत के दौरान ये चीज़ सामने आई कि फोटोग्राफी को बेसिकली हम किस सेक्टर में रखें, क्योंकि कुछ लोग इसको विज्ञान का क्षेत्र मानते हैं। जैसे आपने कहा कैमरे में लेंस है, उसकी अपनी क्षमता है, उसकी जांच परख का तरीका है। फिर जब आप लैब में उस चीज़ को डेवलप करते हैं तो वहाँ तमाम तरह के केमिकल्स हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो केमिस्ट्री का फील्ड है।
2: ठीक है
1: तो इस तरह से जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उस कैमरे से या उस फोटोग्राफी करने के बाद जो तस्वीर उभर के आती है सामने हमारे, उसको पूरी प्रक्रिया के दौरान जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं हर आदमी कहता है कि भाई ये इस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ये इस सेक्टर से जुड़ा हुआ है।
2: जी
1: तो बेसिकली फोटोग्राफी को हम क्या आर्ट कहें, हम साइंस कहें, क्या कहें?
2: सर, ये एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा था। तो पहले तो देखिए, आपने खुद ही कहा कि जैसे लेंस है वो फिजिक्स का सब्जेक्ट है, जो केमिस्ट्री केमिकल जो होते हैं जो डॉक्टर में डेवलप करते थे पहले, तो वो केमिकल होता था। तो अल्टीमेटली ये पूरा साइंस का एक विषय था, साइंस की जो भी विधा हो, ठीक है। फिर बाद में जब कलात्मक फोटोग्राफी आने लगी, पहले फोटोग्राफी का काम था सिर्फ डॉक्यूमेंट करना चीज़ों को, जैसे आप हैं, आप दिख रहे हैं, आपको हमने ले लिया। आपका जो थर्ड डायमेंशन निकलता है जब हम लाइट से खेलते हैं, बेसिकली फोटोग्राफी को ये भी कहते हैं कि फोटोग्राफी इज पेंटिंग विथ लाइट। अगर लाइट को प्रॉपर चलाना हमने सीख लिया, प्रॉपर लाइट को हमने पकड़ना सीख लिया, तो हम एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। लेकिन उसके साथ और भी हैं, जैसे एक्सपोजर ट्रायंगल है, शटर स्पीड है, अपर्चर है, आईएसओ है, ये बहुत सारी चीज़ें, वो बात की बात, टेक्निकल में हम नहीं जाएंगे अभी। तो जब हम तीसरा डायमेंशन खोज के निकाल लेते हैं, जैसा और भी लोगों ने, हमारे पर पितामह या उसके और भी एंसल एडम सर ने या उन लोगों ने पकड़ा होगा जब उस चीज़ों को, तब फोटोग्राफी को आर्ट के रूप में लेना शुरू कर दिया गया। और अभी मुझे जहाँ तक मालूम है कि करीब करीब 60-70 साल पहले फोटोग्राफी 100% एज एन आर्ट हो गई, और अब कोई भी आर्ट फोटोग्राफी करता है वो अपने को फोटो आर्टिस्ट बोलता है, सिर्फ फोटोग्राफर नहीं बोलता। आपने देखा होगा सर, बहुत पहले जो बोर्ड होते थे लिखे हुए स्टूडियो के, तो उसमें लिखा होता था आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर, ठीक है। वो
1: जी
2: आर्टिस्ट क्यों होता था, क्योंकि उसको ब्रश भी चलाना होता था, उसको नेगेटिव को रिटच करना होता था, और जहां पे प्रिंट बनाने के बाद कुछ स्पॉट आ गया, चूंकि तब डिजिटल एरा नहीं था, तो उसको कलर से उस स्पॉट को हटाना भी पड़ता था। और बता दूं मैं, कुछ धब्बे ऐसे होते थे जिसको ब्लेड से, जो शेविंग ब्लेड होती है, उसको तोड़ के उसमें छोटा सा एक पॉइंट बनता था, उससे स्क्रब करके उसको उसमें स्मूथ करना पड़ता था, धब्बा हटाने का और कोई जुगाड़ नहीं था। जो तो अब फोटोग्राफी को 100% एज एन आर्ट भी कहा जाता है, और ये दुनिया भर के जितने भी विजुअल आर्ट है, विजुअल आर्ट की फैकल्टीज, इवन हमारे BHU

0: है या विद्यापीठ है बनारस की बात करें तो, और पूरी दुनिया में कहीं भी अगर है तो ये पढ़ाई जाती है। कहाँ? अप्लाइड के अंदर, जो अप्लाइड आर्ट है, कॉमर्शियल आर्ट है, उसके अंदर फोटोग्राफी पढ़ाई जाती है।
1: अच्छा, ये बात तो रही कि पढ़ाई का शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ। फोटोग्राफी जहाँ तक हम इसकी बात करते हैं, तो पहले इसको शागिर्दगी में लोग सीखा करते थे कि भाई हमारे जो गुरुजी हैं वो भी अच्छा उससे पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों ना हमें भी अगर शौक है तो हम भी इसी फील्ड में चले जाएं। तो एक शागिर्दगी वाला ज़माना था। उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे करके हम आज मोबाइल की एज में आ गए हैं कि आज हर एक व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन है और हर एक व्यक्ति फोटोग्राफर बना घूम रहा है। ये जो दौर है ट्रेडिशनल फोटोग्राफी से लेकर के और अभी डिजिटल फोटोग्राफी के दौर में, स्पेशली मैं बात करूंगा कि मोबाइल क्रांति के दौर में जब हम आ गए, इस पूरे दौर के बदलाव को आप कैसे देखते हैं, और वो शागिर्दगी वाला जो क्रेज था फोटो

0: पूरे दौर के बदलाव को आप कैसे देखते हैं, और वो शागिर्दगी वाला जो क्रेज था फोटोग्राफी सीखने का, वो प्रोफेशनल करियर ओरिएंटेड कोर्स की तरह कब डेवलप हो गया?
1: देखिए, आज भी मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगा कि जो शागिर्दगी वाले सिस्टम से आए हैं, तो आपको मालूम है हर विधा में संगीत है, गायन है, वादन है, तो उसमें शागिर्दगी में जिसका जितना परफेक्शन होता है, उतना अभी कोर्स करके 6 महीना, साल भर या 2 साल का भी कोई कोर्स करें तो उतना परफेक्शन आपका नहीं आएगा। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि शागिर्दगी में गुरु एक चीज को बताने में 1 महीना ले लेता था, जबकि अभी जो है वो एक कोर्स है, उस दिन
0: तो
1: आपको वही पढ़ाया जाएगा
0: सर्टिफिकेट और डिप्लोमा को 6 महीने से साल भर में
1: साल
0: कंप्लीट
1: भर।
0: करना होता है।
1: लेकिन मैं समझता हूँ शागिर्दगी वाला सिस्टम जो था वो अभी भी बढ़िया है। आप बेशक कोर्स कर लो, लेकिन फिर भी आप किसी से गड्ढा बंधवाओ जरूर, उसे माइक्रो फिनिशिंग का काम है वो उससे करिए,
0: जो
1: ये बहुत जरूरी है।
0: परफेक्शन है
1: हाँ
0: वो आपका ट्रेडिशनल तरीके से, वो शागिर्दगी वाले तरीके से ही आएगा।
1: जी, क्योंकि शॉर्टकट अभी अभी बहुत शॉर्टकट हो गया है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है।
0: अच्छा, जब हम करियर की बात करते हैं फोटोग्राफी की विधा में, तो करियर वो ट्रेडिशनल तरीके से लेकर के और आज के डिजिटल युग में किस तरह से बदलाव आया है?
1: देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा वेडिंग फोटोग्राफर ही है और सबसे ज्यादा पे भी वही करता है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली उसमें आपका असाइनमेंट रहता है। तो वेडिंग की बात करें तो वेडिंग में पहले क्या होता था, बहुत पहले जब वीडियो नहीं आया था तो सिर्फ एक फोटोग्राफर होता था, वो कुछ रील्स अपने साथ लेके जाते थे और वो शूट करते थे और फिर उसी से प्रिंट बनाना, चाहे 50 फोटो हो, चाहे 100 फोटो हो, चाहे 150 फोटो हो, ये काम होता था। कालांतर में जब वीडियोग्राफी आई और कैमरे सस्ते होने लगे, तो लोगों ने फिर वीडियो फोटोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी, दो लोगों का ये रहता था असाइनमेंट कि दो लोग आएंगे, शूट करेंगे और वो लोग चले जाएंगे। प्रेजेंट जो टाइम है अभी, ये कहानी है साहब कि एक वेडिंग में आपको 6 से कम लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। एक करेगा ट्रेडिशनल फोटोग्राफी, मतलब वो डॉक्यूमेंट करेगा, वो सबको सामने दिखाएगा, यस बोलेगा और शूट करेगा, ये हो गया। एक होगा जो कैंडिड शूट करेगा, वो अलग अलग लेंस से बदलेगा और वो कभी भी बोल के नहीं खींचेगा, और हमेशा वो जो है बिल्कुल नेचुरल जो अभिव्यक्ति है, चाहे वो छुप के खींचे, चाहे वो पीछे से खींचे, अपना एंगल बदले, कुछ भी करे, वो नेचुरल अभिव्यक्ति पकड़ता है उसकी। तो
0: एक्चुअली
1: मेरा
0: वो इमोशन को कैप्चर कर रहे हैं।
1: इमोशन इमोशन इमोशन को करता है और मोमेंट को करता है।
0: निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा क्षेत्र है ये उभरता हुआ, जिसमें करियर की अच्छी संभावनाएं हैं, और जैसे कि आपने बताया कि इस क्षेत्र में पैसे कमाने की कोई सीमा नहीं है। आपके काम पर, आपके परफेक्शन पर वो एक छोटे से अमाउंट से लेकर के और बहुत हैवी अमाउंट तक जा सकता है। तो
1: करेक्ट
0: कहने
1: करेक्ट,
0: का मतलब ये है कि जो एक ट्रेडिशनल तरीका है किसी के साथ लग करके और काम को सीखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप सर्टिफिकेट करो, आप फील्ड में डिप्लोमा करो, आप डिग्री ले लो, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आप उसको नहीं सीखेंगे, आप उस चीज़ की बारीकी को नहीं जानेंगे, तब तक आप उस फील्ड में एज ए एक्सपर्ट काम नहीं कर पाएंगे। तो
1: जी
0: ये बहुत ज़रूरी है हमारे सभी श्रोताओं के लिए कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसके जो प्रैक्टिकल्स हैं आप किसी के साथ जुड़ करके उस काम को सीखें, और उस काम को न सिर्फ सीखें बल्कि उसकी बारीकियों को सीखें,
1: बारीकियों
0: तब
1: को
0: जा
1: सीखें।
0: करके आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे।
1: जी,
0: आप यहाँ आए, आपने हमारे श्रोताओं को फोटोग्राफी के बारे में, उसमें करियर के क्या ऑप्शन हैं इस बारे में जो अच्छी जानकारी दी है, निश्चित तौर पर उनके बहुत काम की है। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है शब्दों के पिटारे को खोलने की और जानने की कि क्या है आज के हमारे हिंदी और अंग्रेजी के शब्द। तो आज का हमारा हिंदी का शब्द है अनुशीलन, जिसका अर्थ है किसी विषय का गहन अध्ययन, अभ्यास या फिर निरंतर चिंतन करना। और आप इस शब्द से वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, विद्यार्थियों को संस्कृत ग्रंथों के अनुशीलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरा वाक्य ऐसे आप बना सकते हैं कि गुरुजी ने वेदों के अनुशीलन की महत्ता समझाई।
3: और इसी के साथ आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है हाइपोथेटिकल, जिसका अर्थ होता है काल्पनिक, अनुमानित या ऐसी स्थिति जो वास्तविक न होकर केवल कल्पना या धारणा पर आधारित हो। और आप इस वर्ड से कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार बना सकते हैं, द टीचर्स गेव अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। आप ये भी कह सकते हैं, वी डिस्कस्ड अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन।
2: दोस्तों, कहते हैं कि कभी-कभी सिर्फ एक सवाल आपकी सोच की गहराई बता देता है और कभी वही एक जवाब आपको भीड़ से अलग पहचान दिला देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है आपके ज्ञान, आपकी समझ और आपकी सूझबूझ की छोटी सी परीक्षा का।
3: बिल्कुल, यहाँ किस्मत की नहीं बल्कि आपकी जानकारी बोलती है, और इसी रोमांच के साथ आपका स्वागत है

0: आप सभी के पसंदीदा क्वेश्चन ऑफ द डे में।
1: लेकिन लेकिन लेकिन आज का सवाल पूछने से पहले जोरदार तालियां हो जाए उन साथियों के लिए जिन्होंने कल के सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब देकर अपनी शानदार पहचान बनाई।
0: बिल्कुल सौरभ। तो दोस्तों आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कल के सवाल पर और उसके सही जवाब पे। तो हमारा कल का सवाल था कि भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है, जिसका सही जवाब था तेलंगाना।
1: और साथियों, इस सवाल का सही जवाब देने वाले हमारे विजेताओं के नाम हैं प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, चंदा चंदौली से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी से।
0: आप सभी विजेताओं को ढेर सारी बधाई हो। यही विजेताओं की जिज्ञासा है, जो अपनी यही लगन और सीखने का यही जुनून आपको हर दिन नई पहचान दिलाता है।
1: तो अब बारी है आज की नई चुनौती की। आप तैयार हैं ना? देखते हैं आज कौन देता है सबसे सटीक जवाब।
0: ध्यान से सुनिएगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर के वो संगीत का शहर घोषित किया गया है?
1: साथियों, सवाल एक बार फिर से आपको बता दें, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया था? तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब आपके पास है तो देर मत कीजिए, अपना उत्तर हमें इंस्टाग्राम पर, जो कि है youth_AIR वाराणसी, या फिर हमारा ईमेल पता youth_AIRVNS@gmail.com पर भेज सकते हैं।
0: दोस्तों जवाब भेजते समय अपना नाम, शहर और संपर्क विवरण लिखना बिल्कुल न भूले, ताकि सही उत्तर देने पर हम अपना आपका नाम भी गर्व से अपनी विजेताओं की सूची में शामिल कर सकें।
1: जी हाँ, याद रखिए, हर सही जवाब सिर्फ अंक नहीं बढ़ाता बल्कि आपके आत्मविश्वास और ज्ञान को भी नई पहचान देता है।
0: तो सोचिए, समझिए और भेज दीजिए अपना जवाब। क्या पता अगली बार जब हम विजेताओं के नाम ले तो सबसे पहले आप ही का नाम गूंजे।
1: बिल्कुल, इसी उम्मीद और ढेरों शुभकामनाओं के साथ अब सुनते हैं एक खूबसूरत गीत। आनंद लीजिए।

0: हाँ जी, तो दोस्तों, वक्त गुजर जाता है लेकिन इतिहास अपनी छाप छोड़ जाता है। तारीख अपने साथ कुछ कहानियाँ लेकर आती है, कुछ इतिहास बदल देती है तो कुछ आने वाले कल की दिशा तय कर जाती है।
1: बिल्कुल। आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली तारीख भी दुनिया बदलने वाली घटनाओं की गवाह हो सकती है? तो चलिए आज जानते हैं कि 8 जुलाई के इतिहास में क्या-क्या खास हुआ था।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज ही के दिन 1914 में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ज्योति बसु का जन्म हुआ था।
1: और आज ही के दिन 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत दर्ज की थी। और आज ही के दिन 1497 में वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए लिस्बन में अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए थे।
0: और दोस्तों, आपको बता दें, इसी के साथ आज के दिन सन 1954 में सतलुज नदी पर निर्मित भाखड़ा नंगल पनबिजली परियोजना पर बनी सबसे बड़ी नहर का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन भी किया था।
1: और आज ही के दिन 2011 में स्पेस शटल अटलांटिक फाइनल लॉन्च के साथ नासा मिशन STS-135 के स्पेस शटल कार्यक्रम की अंतिम उड़ान शुरू हुई थी।
0: बिल्कुल दोस्तों। और दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, कभी-कभी बस एक पल, एक फैसला या एक छोटी सी जानकारी इंसान की पूरी दिशा बदल देती है।
1: बिल्कुल। और अफसोस की बात यह है कि कई बार लोग मेहनत तो पूरी लगन से करते हैं, लेकिन सही अवसर की जानकारी समय समय पर न मिलने पर कारण मंजिल उनसे दूर हो जाती है।
0: इसीलिए कहते हैं कि तैयारी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है सही समय पर सही सूचना मिलना, क्योंकि एक नोटिफिकेशन, एक भर्ती या एक आवेदन की तारीख आपके सपनों की शुरुआत बन सकती है।
1: कौन जाने जिस अवसर का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, वह आज के ही इस रोजगार सूचना में आपका इंतजार खत्म कर दे।
0: तो अपनी उम्मीदों को बनाए रखिए, तैयारी को जारी रखिए और अगले कुछ मिनट हमारे साथ जुड़े रहिए।
1: क्योंकि अब बारी है आज की ताजा और महत्वपूर्ण रोजगार की। जी हाँ, शुरुआत करते हैं आज की पहली भर्ती, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा SBI पीओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भर्ती के अंतर्गत कुल 1500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट SBI.bank.in पर भी विजिट कर सकते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, तो आज है इसकी आखिरी तारीख, तो चूकिएगा मत।
1: और फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: मोनी, आजकल कई सरकारी स्कूलों के बाहर पीएम श्री स्कूल का बोर्ड दिखाई देने लगा है। क्या ये नए स्कूल बनाए जा रहे हैं?
1: नहीं सौरभ, यह तो सबसे दिलचस्प बात है। पीएम श्री के तहत नए स्कूल नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि देश भर में चुनिंदा सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं के साथ मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
0: अच्छा, तो पीएम श्री का पूरा नाम क्या है?
1: पीएम श्री का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी।
0: अच्छा, इस योजना में कुल कितने स्कूल शामिल किए जाने हैं?
1: देश भर में लगभग 14,500 से अधिक सरकारी स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और राज्य सरकारों के चयनित स्कूल भी शामिल हैं।
0: तो दोस्तों, फिलहाल हम घड़ी की तरफ भी देख रहे हैं, जो कि इशारा कर रही है हमारे प्रस्थान का। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए युववाणी।
1: मैं थी आपकी रेडियो साथी मोनी।
0: और मैं सौरभ। दीजिए हमें इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जो रिले होंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सुनाएं गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ कैलें। यह योजना में मिले वाले 5 लाख रुपया तक का कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा से प्रदेश के 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी आ उनकर आश्रित लाभ पाई हैं। ए मौका पर मुख्यमंत्री कहने कि विद्यार्थियों के सही राह दिखावल शिक्षक लोगिन का कर्तव्य भैले के साथ ही राष्ट्रीय दायित्व हवे।
1: आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें पहले तो ईश्वर करे कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना न हो, लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, उन स्थितियों में जिसमें अस्थाई शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री अजय चित्रकूट में 951 करोड़ रुपया के लागत के कई गो विकास परियोजना के लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल भेल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय अलनीनो के कई गो क्षेत्रन पर संभावित प्रभाव आ तैयारियन की समीक्षा बदे काल एगो उच्च स्तरीय बैठकी कैलस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्र के अध्यक्षता में ई बैठकी नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भेल। बैठकी में 15 से बेसी मंत्रालयन का सचिव आ सीनियर अधिकारी लोग हिस्सा लेने। एगो रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए, राज्यों के साथ मिलकर उन जिलों पर मानसून या देर से आए मानसून के असर का आकलन किया जाए जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। यह भी निर्देश दिया गया कि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं, साथ ही चारे के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएं और राज्यों के साथ मिलकर इस बारे में नियमित निगरानी की जाए। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के लिए मंत्रालयों को राज्यों के साथ मिलकर आपसी तालमेल से काम करना चाहिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: कृषि या किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानो अजुए अलनीनो के संभावित प्रभाव के समीक्षा बदे उच्च स्तरीय बैठकी कैले। पत्रकार लोगिन से बतियावत श्री चौहान कहने कि केंद्र सरकार एह बरिस अप्रैले में अलनीनो के चुनौती से निपटले के तैयारी शुरू कर देले रहल। वहां के बतौनी कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ आ नोडल अधिकारियन के जरिया से बुआई, फसल और बाजार के स्थिति पर लगातार नजर रखल जा रहल हो। श्री राम मंदिर के चढ़ावा में कथित हेराफेरी के मामला के 3 गो आरोपियन को पुलिस रिमांड आज से शुरू हो गई। यही कड़ी में तीनों आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा आ करुणेश पांडे के आज हिरासत में पूछताछ शुरू भइले से पहले चिकित्सा जांच बदे पुलिस लाइंस ले आवल गईल।

0: श्री अमरनाथ जत्रा बदे आज एगो नया परामर्श जारी कैल गैल बा। एगो रिपोर्ट।
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी परामर्श के अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। यात्रा के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी जिलन में आज व बिहने कई जगह पर बरखा और गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। विभाग की ओर से यह दौरान कहीं कहीं बिजली गिरले या भारी बरखों का येलो अलर्ट जारी कर गया बा। यह पीछे गोरखपुर के सतही पूर्वी जिलन में अजुओ सवेरे से आसमान में बादल छवले रहल आ रुक रुक के हल्का है बुन्नी परत रहल। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का समय रहेगा रात 9:30। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे डॉक्टर रागिनी सरना। प्रसारण समय रात्रि 8 बजे। शाम 7 बजे अंग्रेजी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे प्रोफेसर अलका सिंह से आकांक्षा सिंह की बातचीत। विषय होगा पॉपुलेशन ग्रोथ, अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में खरीफ में सब्जियों का हानिकारक कीटों से बचाव विषय पर डॉक्टर कुलदीप सिंह से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही देवता दिन सरोज के गाए लोकगीत भी सुने जा सकेंगे। फिल्म संगीत श्रोता सुन सकेंगे शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में और रात 8:15 पर रसमाधुरी में। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की और अब कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नजर। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 4 बजे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में सुनिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन रात 10:30 और सुबह 7:31 पर, और आशीष कुमार मिश्र का उप शास्त्रीय गायन होगा दिन में 12:45 पर। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:05 पर भिंडी की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना होगा सुबह 6:10 पर और विचार बिंदु 6:30 पर। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ होगा सुबह 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 7 बजे और मधुरी माह 8:45 पर। श्रोताओं के मेल्स पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। महिलाओं के लिए अंगनैया कार्यक्रम होगा दिन में 1:15 पर, जिसमें महिलाओं में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विषय पर

0: बातचीत सुनवाई जाएगी, साथ ही होगा गीत संगीत। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर, जिसमें सेगमेंट होंगे आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर, जिसमें कल किसान भाई सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो कृषि जगत। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी सुहानी शुक्ला। गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन प्रसारित होगा रात 9:30 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे रात 10 बजे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

प्यासा सावन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। संतोष आनंद के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत फिल्म मेरा साया से, आवाज लता मंगेशकर की है। शब्द रचना राजा मेहंदी अली खान और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: गीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः इण्डोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे युनेस्को वैश्विक सांस्कृतिक अभिलेख स्थलस्य प्रम्बानन मन्दिरस्य ऐतिहासिकं भ्रमणम् प्रतिपादितं यत् मन्दिरस्य संरक्षणे भारतस्य सहभागिता द्वयोः देशयोः सांस्कृतिक न्यासं प्रकटीकरोति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः जलाप्लावितेन प्रभावितानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं दूरभाषेण सम्भाषणं विधाय केन्द्रसर्वकारपक्षतः सम्भाव्य सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनम् अयच्छत्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागानुसारं देशस्य मध्य पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च संभावना वर्तते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पः उदघोषयत् यत् ईरान देशेन साकं युद्धविरामाय कृतं सन्धिज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदम् एति। वैश्विक भूराजनैतिक चिन्तन प्रभावात् भारतीय शेयर विपणौ भीषणः ह्रासः। सेंसेक्स निफ्टी सूचकांकौ सार्धद्विशतात्मिका अपचितिः दृश्यते। अपि च फीफा विश्वकप पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां स्विट्जरलैंड दलेन कोलंबिया दलं पराभूय प्रागुपान्त्य चरणे अर्जेंटीना दलेन सह क्रीडा सुनिश्चिता कृता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य इण्डोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे संस्थिते युनेस्को विश्व न्यास स्थले प्रम्बानन मन्दिर परिसरे इण्डोनेशिया राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यमुना साकं भ्रमणम् अकरोत्। तत्र पारम्परिक गैमेलिन संगीत ध्वनिभिः शास्त्रीय नृत्यैश्च प्रधानमन्त्रिणः अभूतपूर्वम् अभिनन्दनं विहितम्। नवमशताब्द्याः अस्य मन्दिर परिसरस्य अवलोकनावसरे प्रधानमन्त्रिणा मुख्य शिव मन्दिरे विशेष पूजार्चना कृता। सहैव भारत इण्डोनेशिया देशयोः सहयोगेन मन्दिरस्य संरक्षण प्रयासाः दृष्टाः। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यमुना प्रतिपादितम् यत् प्रम्बानन मन्दिरं भारत इण्डोनेशिया देशयोः शतशः वर्षाणां प्राचीन सभ्यतायाः प्रतीकभूतं वर्तते। मन्दिरस्य पुनरुद्धाराय च तेन भारताय कार्तज्ञम् आविष्कृतम्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यदियं यात्रा अतीव आध्यात्मिकी अविस्मरणीया च अजायत। द्वादशशताब्देः अस्य न्यासस्य संरक्षणाय श्रीमोदी इण्डोनेशिया जनेभ्यः धन्यवादं विज्ञापितवान्।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: जकार्तायाम द्विपक्षीय वार्तानंतरम प्रेषिते संयुक्ते घोषणा पत्रे भारत इण्डोनेशिया देशाभ्याम सर्वविध आतंकवादस्य तीव्रा निंदा विहिता। द्वयोर देशयोः नेतृभ्याम अंतरराष्ट्रीय नियमानुसारेण आतंकवादस्य सम्मुखं दृढ़ वैश्विक प्रयासस्य आह्वानं विहितम्। उभाभ्याम प्रमुखाभ्याम वैश्विक स्तरे प्रतिबंधितानां आतंकवादिनां संघटनानां च विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय बलं प्रदत्तम्। उग्रवाद विरोधी सहयोगं च दृढीकर्तुं सहमतिः प्रकटिता। स्वस्य त्रिदेशीय प्रवासस्य द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री अद्यैव त्रीणि दिनानि यावत् ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबर्न नगरं प्राप्स्यति। तत्र सः ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणा एंथनी एल्बनीज़।

इत्यनेन साकं तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। अनेन साकमेव सः भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् उभय देशस्य शीर्ष उद्योगपतीन् तथा च मेलबर्न नगरे प्रवासी भारतीय सभां च संबोधयिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य अतिवृष्ट्या जलौघ सदृश परिस्थित्या सहैव भूस्खलनेन प्रभावितानां संकटग्रस्तानां अनेकेषां राज्यानां मुख्यमंत्रिभिः साकं दूरभाषेन संभाषणं विहितवान्। तेभ्यः केन्द्र सर्वकारस्य पक्षतः संभाव्य सर्वविध साहाय्यस्य दृढ़ाश्वासनं च असौ अयच्छत्। श्री शाहेन महाराष्ट्र राज्ये भीषण अतिवृष्ट्याः जलप्लावनस्य च स्थितेः समीक्षां कर्तुं महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्रिणा देवेन्द्र फडणवीसेन सह विशेष चर्चा अकारी। संवादावधौ गृहमंत्रिणा मुख्यमंत्रिणं प्रति संकटकाले महाराष्ट्र सर्वकारस्य सहयोगार्थं केन्द्रीय प्रशासनात् सर्वविध साहाय्य प्रदानस्य प्रतिश्रुतिः अभिव्यक्ता। अनेन सहैव गृहमंत्रिणा गुजरात राज्ये अतिवृष्ट्या जल अवरोध स्थिति सन्दर्भे गुजरातस्य मुख्यमंत्रिणा भूपेन्द्र पटेलेन साकमपि मंत्रणा कृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य देशस्य मध्यम एवं पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च कृते ऑरेंज अलर्ट इति नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अनेन सहैव ऋतु विभागेन जम्मू कश्मीर लद्दाख हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेशेषु अपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं विहितम्। विभागेनानेन संसूचितं यत् आगामिषु द्वित्रिदिनेषु प्रावृट् उत्तर अरब सागरस्य अवशिष्टेषु क्षेत्रेषु तथा च राजस्थान हरियाणा पंजाब प्रान्तानां शिष्टेषु भूभागेषु अग्रे प्रवर्धमानः सन् संपूर्णे देशे पूर्णतः व्याप्तो भविष्यति। अमेरिका राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उदघोषयत् यत् ईरान देशेन सह सैन्य संघर्षं निर्वापयितुं हस्ताक्षरितं संधि ज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदं सम्प्राप्तो विद्यते। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् अमेरिका सम्प्रति तेहरान प्रशासनेन सह संभाषणं कर्तुं नैव वांछति। राष्ट्रपतिः ट्रम्पस्य इदं वक्तव्यं तुर्की देशस्य राजधान्याम् अंकारा नगरे आयोजिते नाटो शिखर सम्मेलनस्य वार्ताहर सम्मेलने आगतम्। एषः घटनाक्रमः होमूर चलपोते त्रिषु तैल ग्राहक पोतेषु अस्त्र प्रहारेण संजातस्य विवादस्य पश्चात् अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये प्रवृत्तस्य प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमणस्य परिणामो वर्तते। यद्यपि ईरानेन अस्य आक्रमणस्य उत्तरदायित्वं प्रत्यक्षतया नैव अंगीकृतम्। अद्य भारतीय शेयर विपणौ महती विक्रय प्रतिस्पर्धा दृष्टा यस्य प्रभावात् सेंसेक्स निफ्टी इत्येतो उभावपि प्रमुख सूचकांकौ शत प्रतिशतं सार्ध द्वि प्रतिशतात्मिका अपचितिः अभवत्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन अद्य श्री अमरनाथ जी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकं च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रिणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्यपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनाङ्के एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा वर्तते। फीफा विश्वकप फुटबॉल प्रतिस्पर्धायां फ्रांस मोरक्को नॉर्वे इंग्लैंड स्पेन बेल्जियम अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड देश

0: ही राउंड ऑफ 16 इत्याख्ये द्वंद्वे विजित्य अंतिमाष्टमेषु स्वस्थानं सुरक्षितम्। शुक्रवासरे तावत् प्रथमे प्रागुपान्त्यचक्रे रात्रौ सार्धैकवादने फ्रांस देशस्य स्पर्धा मोरक्को देशेन सह भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम। बुझावन भैया।
1: हाँ जीतन भैया।
0: अरे का हाल चाल बा खेती किसानी को हो?
1: ए जीतन भैया, खेती किसानी का कुल हाल चाल तो बड़ा नीमन बा, और अपनो सुनावा।
0: अपनो देखा भैया ठीक बा, लेकिन जौन है खेती बाड़ी करे में जौन है ना नगद पैसा उसा चाहत बा, एकर बड़ा दिक्कत आ गल हो।
1: ये देखा भैया, खेती किसानी का काम हो चाहे घर के कोनो सामान खरीदे के हो, जला तो खलितवा में अगर पैसा रही तबे कुछ कौन काम होई।
0: सही कहला बुझान भैया।
1: और एक चीज और जानत हुआ,
0: का बुझान भैया?
1: अब खेती बाड़ी में समय देखा, धान रोपाई के समय आ गल बा और चलत भी बा। तू तो लगत है कि रोपवा पुआ के खाली हो गल बा, वही सब चेहरा पर तोहरे मुस्कान बा। एक चीज और हुआ, माने बिया जन तैयार हो गई बा, ओके खेत में लगाओ के बा, खेती करे के बा, जैसे मजदूर बाणे रोपनी बाणी ट्रैक्टर के जोताई बा, ओके साथे साथे खाद बाय के जरूरत पड़े ले ना,
0: पूरा पड़ा ले भैया।
1: तो ऐसा जरूरत पर किसान के पास कहूँ कहूँ पैसा नहीं रहा। तो एक तो जानत हुआ का कह जला भैया,
0: का करे जला भैया?
1: सरकार यही बदी यही बात का ध्यान रखे बदे सरकार तरह तरह के योजना और चलावत बा, ओकर लाभ ले लोग चाहिए।
0: कौन कौन योजना चलावत बा बुझान भैया?
1: अब देखा जैसे भैया ये मन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बा, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जोन बा ये सरकार के बड़ा महत्वाकांक्षी योजना बा और बड़ा लाभदायक योजना बा। एकर किसान भाई जानत भी हुई हैं, अगर न जानत हुई हैं तो हम चर्चा भी कैल जाए एकर।
0: और कौन कौन योजना पर जान भैया?
1: अब देखा भैया, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बा उमन जिसे जे कृषि कार्य करत बा चाहे कौनो व्यवसाय करत बा, वो व्यवसाय करे बदे चाहे बड़ा व्यवसाय हो चाहे छोटा व्यवसाय है, ओकरे बदे 20 लाख रुपया तक का लोन देवे ले।
0: अच्छा बड़ा बढ़िया योजना बात आई थे। तो कौनो और योजना भी लगावले सरकार?
1: नहीं योजना तो कुल बहुत बड़ी, जैसे हो किसान सम्मान निधि योजना बा, किसान के लाभ भी मिले बा, समय समय पैसा भी आ जाला, लेकिन जो इस समय योजना बढ़िया बा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ओकर किसान काफी लाभ ले होना। आ ये योजना के कई चरण में बांटल गया है। हाँ, जैसे ये शिशु बा ओके हाँ बच्चा बा ओके 50,000 तक रोजगार व्यवसाय करे बदे मिलेला, और जे किशोर बा मतलब शिशु से थोड़ा सा बड़ा बा ओके 50,000 से लेकर के 5 लाख तक रुपया का लोन देवल जाए सरकार, और साथे साथे किशोर से थोड़ा सा जे बड़ा बा तरुण अवस्था में बा ओके 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपया तक का सरकार लोन देवल।
0: अच्छा बढ़िया बढ़िया बात है।
1: एकर खासियत एक और है,
0: भैया
1: योजना सरकार जो देवे बिना गारंटी का।
0: अच्छा।
1: हाँ, बिना गारंटी के योजना देवे, आ ये पर संपत्ति का कौनो गिरवी रखे के जरूरत नहीं पड़े।
0: नहीं,
1: हाँ
0: तो कहो भैया योजना का लाभ लेवे बदे कहाँ जाए पड़ी?
1: देखा योजना का लाभ लेवे बदे भैया जिसे बैंक जाए को ही, जला बैंक से सारी जानकारी तू ले सकला, आ बैंक का जोन प्रबंधक बाने जिसे बैंक वाले जोन भैया लोग बाने योजना के बारे में विस्तार से बताई हैं, और वही तो के सुविधा भी प्रदान करी हैं।
0: तो कोनो दस्तावेज भी लगत हुई?
1: ये भैया देखा जनता हुआ ना, कोनो भी काम करे जीबा है ना, बैंक से संबंधित जब कोनो काम करे जीबा तो बिना दस्तावेज का कोनो काम होत नहीं। और दस्तावेज में जानत हुआ काका मुख्य चीज बा, जैसे आधार कार्ड बा जनता ना हुआ, आधार कार्ड

0: अब
1: हाँ
0: मोबाइल एक दूसरे से लिंक होला तो एक बिना तो काम चले वाला नहीं बा।
1: नहीं बा।
0: अच्छा एक जौन लाभ होला छोट कारोबारी दुकानदार या कृषि से जुड़ल जो उद्यमी कर व्यवसाय करे वाला बा वो के लाभ ले सकेला।
1: बड़ा बढ़िया बुझान भैया बतैला योजना सरकार, मतलब इतना कुछ हम किसानन बदे सोचत हो, तो हम किसानन के भी सोचक चाहिए कि हम एकर लाभ ले सकी, ताकि अपने नज़दीकी बैंक जा कर के एकर जरूरी जौन दस्तावेज है ओके दे करके ये जो योजना का लाभ लेवल जाए। तो हे बुझान भैया देखा हो।
0: देखा जीतन भैया यही से कहा जाला ना
1: हाँ
0: रुपया ही सब कुछ बाय और रुपया बिन कुछ नहीं बाय।
1: अरे बाबा
0: और रुपया राजा है और
1: हाँ
0: सब काम का साजा है। मतलब
1: साझा
0: रुपया बाय भैया तो तुहार कुल काम हो जाए, नहीं
1: हो
0: तो
1: जाए।
0: काम नहीं हुई और समय से तुहार बिया भी पड़ जाए, खाद भी हो जाए और जुताई का भी पैसा दे जाए।
1: तो भैया देखा बात बत कही तो बुझान भैया होता रही, तो है जोन सनेस है ना ते के सुनवा दे बोल जाए।
0: बिल्कुल सुनवा दो जीतन भैया।
2: श्रोता भाई, फोन कॉल पर आधारित सजीव कार्यक्रम।
1: तो बुझान भैया जोन चर्चा करत रही सनेस का, तो
0: हम्म,
1: एके तई सुनवा देवल जाए, ओकरे बाद फिर आगे बत कही सुनावल जाए।
0: बिल्कुल।
2: श्रोता भाई, फोन कॉल पर आधारित सजीव कार्यक्रम हेलो कृषि जगत में।
3: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोता भाई, फोन कॉल पर आधारित सजीव कार्यक्रम हेलो कृषि जगत में दिनांक 9 जुलाई 2026 गुरुवार के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के डॉक्टर विनोद कुमार आपके समस्या और समाधान बदे अपने स्टूडियो में उपस्थित रही हैं। अगर आपके गैस्ट्रोलॉजी विभाग से संबंधित कोनो समस्या हो तो ये फोन नंबर पर फोन करके आप उनसे अपन समस्या बता सकना और इस समस्या से मुक्ति पा सकना। फोन नंबर लिख लें 0542-222-1050 और दूसरा नंबर हो 0542-222-1052। समय याद रखें 9 जुलाई 2026 गुरुवार शाम 6:30 पर।
2: देखा हो जितन भैया।
3: हाँ बुझान भैया।
2: देखा सनिशा तो हो गल, आ सनिशा तो हो गल ता कुछ बात बत कही भी जरूरी बा।
3: बहुत जरूरी।
2: आज के बत कही में क्या सुनवाओत हुआ?
3: देखा आज के बत कही में जो आज के पंचायती में है ना, खरीफ के सब्जियों को हानिकारक कीटों से कैसे बचावल जाए, ये विषय पर डॉक्टर कुलदीप सिंह से बतियले हुन अपन सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया। आपो सुना किसान भाई।
2: बिल्कुल सुनवा दो जितन भैया।
1: डॉक्टर कुलदीप सिंह, आप कृषि वैज्ञानिक हुआ और प्रोफेसर विभागाध्यक्ष भी हुआ कृषि कीट विज्ञान विभाग उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी में। आज हम आपसे ये जानल चाहब कि जो अपने खरीफ में सब्जी लगल है खेते में, जो कि नगदी फसल कहल जाला, हाँ। बड़ा संहार दिला हमने के।
2: जी जी जी।
1: बाकी तो देखा में आवला कि ओमन कुछ कीट पतंगा लग जाना जेकर वजह से ओकर स्वरूप बिगड़ जाला।
2: जी जी।
1: तो बढ़िया पैसा ना मिल पाओ तो फसल जो नुकसान होला तो होबे करे।
2: जी जी।
1: तो ये जो सब्जी लगल है इमन जोन कीट लगत हुआ उसे कैसे बचाव कर जाए, एक विषय में आप जानकारी दें।
4: जी, आपने बहुत बढ़िया समसामयिक प्रश्न किया है। किसान भाइयों की आय को बढ़ाने में बहुत बड़ा साधन सब्जियों का होता है
1: जी।
4: और खरीफ के सीजन में बहुत सारी सब्जियां लगी होती हैं, जैसे नेनुआ है, तरोई है, छोटी वाली तरोई जो होती है जिसको सतपुतिया हम लोग कहते हैं, करेला है,
1: बाजार में बड़ा कम दिखा ले डॉक्टर साहब।
4: हाँ, भिंडी है, ये सब चूंकि सतपुतिया की उपज कम होती है, खाने में बहुत मीठी होती है लेकिन उपज कम होती है, और ये अपना उत्सव होता है उसमें उसको ज्यादा महिलाएं पसंद करती हैं, तो वो मिलता है, लेकिन लगाते लोग पहले से, अभी लग गई है उसकी फसल, बारिश ऐसे शुरू होती है लोग लगा देते हैं।
1: नहीं तो बचाव के उपाय भी डॉक्टर साहब बताओ।
4: जी जी, हम अभी उस पर हम लोग

0: बातचीत करेंगे। तो ये सब्जियां, भिंडी खूब लगी हुई है, लौकी किसान भाई लगा दिए, उनके किसान भाइयों की लौकी अभी अभी आने लगी है, क्योंकि ये बारिश का सीजन है और जैसे ही गर्मी समाप्त होती है और बारिश शुरू हो जाती है, इसमें गर्मी भी बहुत रहती है, बारिश भी बहुत रहती है, उमस भी बहुत रहती है। तो इस वजह से कीटों के प्रकोप का ये बहुत उत्तम समय है, कीटों के पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: अच्छा
0: किसानों के लिए तो ये नुकसान करने लगते हैं।

0: तुरंत उसका जैसे प्रस्फुटन हुआ अंडे से और तुरंत फसलों पर आक्रमण कर देता है। आप देखते होंगे जैसे ही बारिश शुरू होती है बहुत प्रकोप दीमक का हो जाता है। पहली
1: जी
0: बारिश
1: हाँ
0: हुई और दीमक को आप देखते हैं खूब उड़ने लगती है। तो इस तरह से कीटों का कुछ कुछ वर्ग ऐसा है
1: जी
0: जो कीट सभी फसलों को प्रायः कई फसलों को नुकसान करते हैं, जिसमें अभी खरीफ का ग्रास ऑफर हम लोगों ने चर्चा किया, ये खरीफ का फुदका हिंदी में कहते हैं, ये सभी फसलों का वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब इसको कि
1: अच्छा
0: जितना हरा हिस्सा है पत्तियों खा जाएगा उसका डंठल डंठल बचा रहता है। ऐसी स्थिति में खीरा में लग गया, कद्दू वर्गीय सब्जियों में किसी में भी लग गया तो उसका पूरा पत्ती खा जाता है और केवल वो डंठल बचता है, जिसकी वजह से उनका प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो जाता है
1: जी जी
0: और पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। पौधे की जैसे ही ग्रोथ रुकेगी उसका असर सीधे उत्पादन पर पड़ने लगता है, उत्पादन कम होने लगता है और किसान भाई परेशान होकर बहुत सारी पेस्टिसाइड इसमें डाल देते हैं। पेस्टिसाइड को अंतिम विकल्प के रूप में डालना चाहिए, उस पर हम लोग भी अभी थोड़ी चर्चा करेंगे।
1: जी
0: इसके बाद और फसलें जो लगी हुई हैं, आप लोग देखते होंगे एक ठो कीड़ा होता है जिसमें रोए बहुत होते हैं, उसको हेयरी कैटरपिलर्स कहते हैं, प्रायः सभी सब्जियों में इस समय लगा हुआ है, सब में यह लगता है।
1: अच्छा
0: एक कीट और होता है उसको कहते हैं, हालांकि नाम उसका तंबाकू की सुंडी है लेकिन वो खरीफ के लगभग सभी फसलों पे वो लगता है, उसको हम पॉलीफेगस पेस्ट कहते हैं, वो 12 महीने उसकी सक्रियता भी रहती है। इस कीट को देखें क्या होता है, किसी पत्ते पे है बहुत सारे इसके शिशु लार्वा, हम लोग कहते हैं सुंडियां, एक पत्ते पर ही सैकड़ों की संख्या में इसकी सुंडियां मिल जाएंगी। तो
1: अच्छा
0: ये और जहां सैकड़ों की संख्या में सुंडियां हैं तो पूरी पत्ती को ये क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, फिर वही प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो जाता है, उत्पादन बुरी तरह से गिर जाता है।
1: जी
0: कुछ कीट ऐसे हैं जैसे आप कद्दू वर्गीय सब्जी में देखिए ननुआ है, लौकी लगे हुए, तो ये किसको हम लोग फल की मक्खी कहते हैं, ये जहां अटैक करता है वहीं से फल मुड़ जाता है और छोटा सा छिद्र करेंगे उसमें थोड़ा
1: लसलसा
0: सा
1: पदार्थ
0: लसला
1: निकला
0: सा
1: जाता है।
0: पदार्थ निकलता है और इसके बाद उस छिद्र में अंदर चले जाएंगे और नुकसान करेंगे, वो खराब कर देते हैं।
1: जी जी
0: तो ये बहुत नुकसान करता है। इसका जो एडल्ट होता है प्रौढ़ कीट, वो उसी छिद्र को छिद्र के पास ही अंडा देता है, छिद्र करके उसी अंडे से ये निकलते हैं और फल को पूरे फल की आकार को टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे और ये खाने लायक नहीं रह जाता, बाद में फल जो है सड़ जाता है।
1: माने ये जो कीट आप बतावत हुआ ये एक समान रूप से हर सब्जी
0: हाँ,
1: पर
0: सभी
1: प्रभाव
0: कद्दू वर्गीय
1: डालेगा।
0: सब्जियों में लगता
1: जी
0: है
1: जी तो इनसे बचे बदे के कार शुरुआत में कुछ उपचार कर जा सकला जिसमें
0: जी।
1: बुआई कर
0: देख
1: लिया
0: हाँ,
1: थोड़ी।
0: बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। देखिए आप किसान भाई सब जानते हैं बारिश के सीजन में घरों में जैसे ही आप लैंप जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, तुरंत उसके पास
1: आ
0: कीड़े
1: जाते
0: बहुत
1: हैं।
0: आ जाते हैं।
1: जी जी
0: तो बस ये प्रकोप बचाने के लिए हम खेतों में लाइट ट्रैप अगर लगा देते हैं तो सारे कीड़े लाइट ट्रैप में आ जाएंगे, उसमें हम उनको कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करके कहीं ले जा करके इनको नष्ट कर देंगे।
1: माने
0: प्राय
1: प्रकाश प्रपंच।
0: प्रकाश प्रपंच, प्राय प्रकाश प्रपंच में नीचे एक जो कंटेनर होता है उसमें पानी रहता है, पानी में किरोसिन ऑयल डाल दें या कुछ साबुन जिसको जिससे हाथ धुलते हैं उसको घोल करके डाल देंगे तो
1: अच्छा
0: कीड़ा उसमें गिरेगा, मर जाएगा। तो ये तो एक बहुत बढ़िया तकनीकी है, इससे फसल पर क्या कहते हैं रसायनों का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारे फसल जो है उसका उत्पादन जो है सुरक्षित रहेगा, किसान भाइयों के साथ साथ जो उसको खाएंगे उनके लिए भी सुरक्षित रहता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे दो कीट और हैं,
1: जी
0: इनको एक को व्हाइट फ्लाई होता है,
1: अच्छा अच्छा
0: व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी कहते हैं, बहुत छोटा छोटा कीट होता है, पत्ती के पास जाएंगे पौधे को टच करेंगे तो
1: अच्छा
0: ये उधर उड़ने लगेगा, कई बार कमजोर आंख वालों को दिखाई भी नहीं पड़ता है और ये बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान करता है। इसके बचने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है, जब इस पे आप किसान भाई पेस्टिसाइड डाल डाल के एकदम से निराश हो जाते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: बहुत बढ़िया तरीका है एलो स्टिक के ट्रैप, पीले रंग का
1: हाँ
0: ये एक एडहेसिव ट्रैप होता है जिसमें ये कीट उड़ेगा उसमें चिपक जाएगा, चूंकि बहुत छोटा कीट होता है तो चिपकेगा तो फिर उड़ नहीं पाता है और
1: अच्छा
0: वहां चिपक जाएगा तो फिर क्या होता है इसकी प्रोजेनी नहीं डेवलप हो पाती। तो हमारी फसल को बचाने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है एलो स्टिक की ट्रैप जगह जगह पर लगा दें, बहुत
1: हाँ
0: दूरी पर नहीं लगाना है,
1: अच्छा
0: 3-4 मीटर पर अगर लगाते जाएंगे तो जिस हिसाब से फसल लगाएं उस हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं, छोटी क्यारी है 3-4 मीटर पर लगाएं, बड़ी क्यारी है थोड़ा डिस्टेंस आप बढ़ा सकते
1: जी
0: हैं।
1: तो डॉक्टर साहब एक किसान भाई बना भी सकन है कि
0: खूब
1: मतलब
0: आराम
1: कैसे
0: से
1: बनावे
0: पीले
1: कीट
0: रंग का
1: को।
0: कोई भी आप एक कोई भी कंटेनर ले लें जिससे कनस्तर होता है उसको ले लें,
1: रंग
0: उस पीले रंग से रंग ले और उस पर ग्रीस लगा दें,
1: अच्छा,
0: या कोई भी चिपकने वाला चीज लगा दें जिससे वो चिपकने लगे,
1: अच्छा,
0: कुछ भी ऑयली चीज लगा देंगे तो उस पर उड़ेगा, चिपक जाएगा। और नहीं कनस्तर मिलता है तो आप पीले रंग का कोई सीट ले लें, प्लास्टिक की सीट, क्योंकि इसमें बारिश होती है कागज रहेगा तो गल जाएगा, प्लास्टिक वाला ले लेंगे तो उसपे ये चिपकने वाला पदार्थ लगा लेंगे तो ये जो है। अच्छा, दूसरा एक किट होता है थ्रिप्स,
1: अच्छा,
0: बहुत नुकसान थ्रिप्स।

0: भी करता है। अब देखिए ये जो व्हाइट फ्लाई के लिए हमने सफेद मक्खी के लिए बताया, तो ये पीला स्टिकी ट्रैप लगाना है और थ्रिप्स के लिए नीला लगा दें, केवल रंग बदल देंगे, नीले से वो आकर्षित होता है। और किसान भाइयों को रक्षा रसायन का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, हम अपनी फसल को बचा सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, एक जन लगावे के कहत हुए तो नीला और पीला वाला अगल बगल आसपास लगावे, क्योंकि दूर दूरी लगा सकन
0: नहीं,
1: कैसे?
0: जहां जिसका प्रकोप है, अगर थ्रिप्स का प्रकोप है तो नीला वाला लगाएंगे,
1: अच्छा,
0: और ये सफेद मक्खी का प्रकोप है तो पीला वाला लगाएंगे।
1: माने दोनों का प्रयोग एक खेत में हो सकला?
0: ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पीले वाले से आकर्षित होगा, नीले वाले से आकर्षित होगा।
1: तो ऊंचाई लगभग कितना रखे चाहिए
0: ये
1: हमें?
0: फसल की ऊंचाई, फसल जो भी आपकी है, फसल से थोड़ा सा ऊंचा रहना
1: थोड़ा
0: चाहिए,
1: सा ऊंचा।
0: जिससे कीट उड़े तो उसमें जाके फंस जाए। अब हमने ट्रैप ही नीचे लगा दिया, फसल ऊपर चली गई
1: ऊपर
0: तो कोई
1: है।
0: मतलब नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ कीट होते हैं, जैसे आपने मिर्चे में देखा होगा, मिर्चे की फसल लगी हुई है, किसान भाई परेशान हो जाते हैं, उसमें लग जा रहा है माइट। माइट को कंट्रोल करने के लिए किसान भाई बहुत सारी दवा डाल डाल के परेशान हो
1: जी
0: चुके हैं।
1: जी
0: देखिए हम दवाएं जो रक्षा रसायन डालते हैं तो उसका असर ये होता है, जो हमारे मित्र कीट हैं वो ही मार दिए जा रहे
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: माइट के साथ जो समस्या है कि माइट की जो शत्रु हैं, यानी किसान भाइयों के जो मित्र हैं, किसान भाई शत्रु को मारने के चक्कर में अपने मित्र को भी मार
1: मित्र
0: दे रहे
1: का
0: हैं।
1: जी।
0: तो सबसे बढ़िया तरीका होगा कि मिर्ची की फसल में एक रक्षा रसायन बहुत बढ़िया है, उसको इस्तेमाल करें, इमिडाक्लोप्रिड है, 150 ग्राम से 200 ग्राम इसकी सक्रिय तत्व की मात्रा लें, और 1 हेक्टेयर की फसल के लिए होता है। किसान भाइयों की एक बहुत जरूरी बात ये हमको बताना चाहेंगे कि रसायनों की मात्रा का ध्यान जरूर रखें। बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर देते हैं तो क्या होता है, कीटों में प्रतिरोधन क्षमता का विकास हो जा रहा है, फिर किसान भाई बार बार जब दवा वही दवा डालते हैं तो दवा काम नहीं करती, तो किसान भाई बहुत परेशान हो जाते हैं,
1: जी
0: कई बार निराशा हो जाती है। तो
1: डॉक्टर साहब, एक बात जानना चाहूँ आपसे
0: जी
1: कि आप बताओ तो कि इमिडा क्लोरोपीड का प्रयोग करे चाहिए तो
0: जी
1: एमन भी कई परसेंट आवाल कई परसेंट का प्रयोग
0: सत्रह
1: करे?
0: दशमलव 4% का जो दवा है, सत्रह
1: हाँ
0: दशमलव
1: हाँ अच्छा
0: हाँ इसको 17% SL करके आती है, तो उसको इस्तेमाल करना है,
1: अच्छा
0: इसी मात्रा में आती है, बाकी जो परसेंटेज है अलग अलग दवाइयों का अलग अलग परसेंट है, तो ये परसेंट पे बहुत फोकस नहीं करेंगे, वो जाएंगे मार्केट में इमिडाक्लोप्रिड मांगेंगे तो 17.8 का और मिलेगा ही वो
1: अच्छा
0: आपको।
1: अच्छा
0: तो उसमें दूसरी दवाएं जो है लेने के पहले किसान भाइयों को यह ध्यान देना है कि उसमें एक त्रिभुज बना होता है, जिसमें लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग और हरा रंग होता है। लाल
1: हाँ
0: सबसे ज्यादा विषाक्त होता है
1: हाँ
0: और हरा सबसे सुरक्षित होता है। तो किसान भाइयों को यह ध्यान रखना है कि नीला और हरा जिस पे लेबल लगा हो
1: जी जी
0: उसी रक्षा रसायन का इस्तेमाल करेंगे, और हमेशा रक्षा रसायनों का प्रयोग करते समय यह ध्यान दें कि उसको दोहराएं नहीं, दूसरे
1: अच्छा
0: रक्षा रसायन का इस्तेमाल करें। बार बार आप दोहराते जाएंगे तो कीटों में प्रतिरोधन क्षमता का विकास हो जाएगा, और इसके लिए जो पहले पुराने रक्षा रसायन बनाए गए थे उनकी विषाक्तता बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए कुछ रक्षा रसायन अभी नए जो आए हैं इनका इस्तेमाल करें, जैसे पायरोमेसिफेन है, पायरीडाइल है, बुप्रोफेजिन है, क्लोरेंट्रिनिप्रोल है, इमामेक्टिन बेंजोएट है। इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट की मात्रा 75 से 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, बाकी ऊपर जो दवाएं बताए हैं उसमें 150 ग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा लेकर के 1 हेक्टेयर में अगर हम छिड़काव करते हैं तो अपनी फसल को बचा सकते हैं।
1: डॉक्टर
0: अच्छा
1: साहब, एक बार हम फिर से जानना चाहब जो दवाई आप बताना हो कि
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: किसान भाइये लोग के अगर लिखा चाहे तो लिख लें
0: हाँ
1: जी, जरा सा बता
0: लिख
1: दीजिए।
0: लें, बुप्रोफेजिन है, इमिडाक्लोप्रिड है, स्पायरोमेसिफेन है, पायरीडाइल है, एमामेक्टिन बेंजोएट है, और स्पाइनोसाइड है, जिसमें एमामेक्टिन बेंजोएट की मात्रा 75 से 100 ग्राम,
1: अच्छा
0: बाकी जो दवाएं बताए हैं उनकी 150 से 200 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए प्रभावी होगी।
1: डॉक्टर साहब, ये द्रव के रूप में है? अच्छा,
0: जी द्रव के रूप में,
1: पानी में घोल के
0: हाँ
1: के
0: पानी
1: प्रयोग
0: में
1: कर
0: घोल
1: रहे
0: के
1: हैं?
0: डालेंगे, चूंकि ये सीजन है बारिश का, इसलिए आप घोल करके डालेंगे तो पौधों में पड़ेगा और सब सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स हैं, अब्जॉर्ब कर लेगा फसल
1: अच्छा, माने
0: वो।
1: बारिश देख के डालें, ऐसा ना
0: हाँ
1: हो कि
0: हाँ
1: छिड़काव कर
0: डालें
1: देना ओकरे
0: तुरंत
1: बाद
0: जो
1: पानी
0: है,
1: बरस गल
0: जी जी
1: सब कुछ धोवा जाए।
0: ये ध्यान रखना है
1: जी
0: कि जो बारिश होने वाली हो तो उस समय नहीं डालेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे,
1: अच्छा
0: और इन दवाओं को पुनः जब रिपीट करेंगे तो कम से कम 1 हफ्ते के समय देंगे।
1: अच्छा अच्छा
0: बार बार जो दूसरे दिन तीसरे दिन रिपीट कर देते हैं तो उससे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है,
1: और उसे आर्थिक बोझ भी पड़ा ला किसान
0: आर्थिक
1: भैया लोगों
0: बोझ
1: के ऊपर।
0: किसान के ऊपर पड़ता है, और किसान फिर बार बार निराशा होती है कि प्रतिरोधन क्षमता का विकास हो जा रहा है। तो ये हमको ध्यान में रखना है
1: अच्छा
0: कि हम जो है इनको ये कर नियंत्रित करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करें। दूसरी बातें हम आप अभी आईपीएम

0: की बात कर रहे थे,
1: जी
0: आईपीएम में यह ध्यान देना जरूरी है, फसलों के जो भी फसल है, किसी भी फसल के कीट लगे अगर तो तुरंत कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है।
1: अच्छा
0: हमको ये देखना है कि इन कीटों को मारने के लिए क्या कीटनाशकों के अतिरिक्त भी कोई उपाय
1: उपाय
0: है,
1: है जी
0: तो
1: जी
0: उस पर पहले
1: करेक्ट
0: विचार कर
1: करेक्ट
0: लेना है। क्योंकि ये जो खाद्य पदार्थ हम जब लेते हैं तो हम यहाँ रसायन, रक्षा रसायन के इस्तेमाल किए, यह हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे देश का कोई नागरिक खाएगा, और ये रक्षा रसायन जब उसमें जाते हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: उस फल में ये संचित हो जाते हैं। जब संचित हो जाएंगे तो ये रक्षा रसायन जो भी खा रहा है उसके पेट में जाएगा, तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान ये करते हैं।
1: अच्छा
0: तो किसान भाई अपने भी सुरक्षित रखें, क्योंकि बार बार दवा डालेंगे तो आर्थिक बोझ उन पर आएगा
1: जी
0: और
1: जी
0: कीटों प्रतिरोधन क्षमता का विकास
1: जी
0: होगा, और कंज्यूमर खाएगा तो उसको नुकसान
1: तो
0: होगा।
1: डॉक्टर साहब, छिड़काव के लेके कितने दिन बाद जो फल की तोड़ाई करें बाजार में
0: हाँ,
1: ले जाए,
0: ये
1: जिससे कि
0: बात
1: असर न
0: अभी
1: पड़े?
0: मैंने आपको बताया था, मिर्ची सोलेनेसी फसलों में जो इसमें मिर्चा लगा हुआ है, मिर्चा में जो इमिडाक्लोप्रिड डालते हैं, बहुत सुरक्षित दवा है और 24 घंटे के बाद ही उस मिर्चे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: लेकिन बाकी जो दवाएं हमने बताया हैं उसको डालने के बाद उनका वेटिंग पीरियड 72 घंटे से लेकर के 96 घंटे तक है, तो
1: अच्छा
0: हम
1: अच्छा
0: कोशिश करेंगे 4-5 दिन तक बचा लेंगे, तो हमारा, हमारी जो खाद्य होगा वो सुरक्षित होगा। और वो लेबल जरूर देखेंगे, नीला
1: नीला और हरा।
0: नीला और हरा पहले इस्तेमाल करेंगे, लाल और पीला अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करेंगे। एक और बात आपको बता दें कि बैगन की फसल भी कुछ लोगों के यहाँ लगी हुई है, पुराना बैगन है उसको काट दिए हैं, नया तैयार हो गया या नई फसल ही लगा दिए हैं, इसमें उसमें हड्डा बीटल भी बहुत लगा है,
1: अच्छा
0: उसको देखें किसान भाई जाएंगे, मतलब पौधे पर इतना ज्यादा एक कीट की संख्या होती है, बहुत सारा लगा हुआ है, लेकिन एक ध्यान ये रखना है, क्योंकि बैगन के फल में अगर कीट लगता है तो फल के अंदर कीट है, ऊपर हम स्प्रेइंग करते हैं
1: जी जी
0: तो कीट को तो नहीं मार पाते, लेकिन अपने सेहत
1: प्रभावित
0: को
1: होते हैं
0: प्रभावित करने की सारी व्यवस्था हम कर
1: जी।
0: लेते हैं। लाइट ट्रैप लगाएं, नीम जनित रसायनों का इस्तेमाल करें, और चूंकि सोलानेसी फैमिली का वो भी है, इमिडाक्लोप्रिड यहां भी इस्तेमाल करेंगे
1: अच्छा,
0: तो बहुत सुरक्षित रहेगा।
1: तो डॉक्टर कुलदीप सिंह, आप हमारे पंचायती में ना, और इतनी अच्छी जानकारी देना कि इस समय खरीफ में जो सब्जी लगल हैं उनमें कौन कौन हानिकारक कीट लगाना और उनसे बचाव कैसे कर रखे हो, ये जानकारी दे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जितन भैया,
1: हाँ बुझान भैया।
0: देखा सुन ला, हमारे पंच भाई भी सुन ले हुई हैं
1: हाँ
0: कि खरीफ में सब्जियों को हानिकारक कीट से कैसे बचाव जाए, इसके बारे में डॉक्टर कुलदीप सिंह इतना बढ़िया जानकारी देना है, और बढ़िया जानकारी के साथ ही साथ सुधीर कुमार श्रीवास्तव भी बड़ा नीमन नीमन पूछबो कैला है। और एक चीज़ और कहना है कि रसायन कीटनाशक का कम प्रयोग करे के
1: कम
0: चाहिए।
1: प्रयोग चाहिए।
0: देखा भाई, सब्जी की जब खेती कैल जला, चाहे किसान भाई हमारे करल हैं, तो कीट बहुत ज़्यादा लगाना, अगर ओकर समय से, डॉक्टर साहब का एक बात सुन ला
1: सुन
0: कि
1: ले।
0: समय से और सही मात्रा में दवाई डाले के चाहिए, तब कीट से छुटकारा मिल सकेले। तो
1: मिल सकेला।
0: बात बत कही तो भैया हो ही गई, अब समय हो था मर्मशान का, तो आज के मर्मशान में क्या सुनवावत हुआ?
1: देखा बुझावन भैया, आज के मनमनसायन में ना देवता दिन सरोज का ई लोकगीत हो देशभक्ति, तो हूँ
0: हाँ
1: सुना किसान भाई भी सुना।
0: बिल्कुल सुनवाया था।

0: श्रोता भाई, फोन कॉल पर आधारित सजीव कार्यक्रम हेलो कृषि जगत में दिनांक 9 जुलाई 2026 गुरुवार के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के डॉक्टर विनोद कुमार आपकी समस्या और समाधान बदे अपने स्टूडियो में उपस्थित रही हैं। अगर आपके गैस्ट्रोलॉजी विभाग से संबंधित कोनो समस्या हो तो ये फोन नंबर पर फोन करके आप उनसे अपन समस्या बता सकना और इस समस्या से मुक्ति पा सकना। फोन नंबर लिख लें 0542-222-1050 और दूसरा नंबर हो 0542-222-1052। समय याद रखें 9 जुलाई 2026 गुरुवार शाम 6:30 पर।
1: कहो जितन भैया।
2: हाँ पूछावन भैया,
1: देखा देवता दिन सरोज का कितना बढ़िया देशभक्ति गीत सुनला है।
2: हाँ
1: हाँ। हमन के पंचायती में जब ढोल झाल जब बजल ना तब वह बड़ मारा मन बड़ा गदगद हो जाला
2: हो जाला भैया। पूछावन भैया, बहुत सही गीत गौने तो हो गल हो। हम तो कहें कि अगले दिन के कार्यक्रम के बारे में भी बता देवल जाए।
1: बिल्कुल बता दा।
2: तो भैया देखा, अगले दिन के कार्यक्रम में जोन बिहानी 6:05 पे खेती के बातें कार्यक्रम आवला, इमन देखा विषय रही भिंडी की खेती, ये विषय पे जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
1: बिल्कुल सही कला है भैया। अभी हमन जोन आज के पंचायती में जोन खरीफ का सब्जी का खेती है ओकरे बारे में विस्तृत हमन जानकारी भी सुन लिए जा, हमारे किसान भाई भी सुन लिए हैं। तो भैया सब्जी तो बड़ा महत्वपूर्ण बा और जानकारी भी मिल गई। सवेरे के तो बता देला, अब सांझी के जोन कार्यक्रम हमन का 6:30 पर कृषि जगत जोन कार्यक्रम आवला कल के दिन में फोन इन कार्यक्रम हेलो कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद कुमार गैस्ट्रोलॉजिस्ट चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आएंगे और ये पेड़ संबंधी जानकारी देंगे और हमारे किसान भाई इस पे जानकारी ले सकते हैं जिसके फोन नंबर है।
2: हाँ, का नंबर वो बता दा, नंबर
1: नंबर हम बताओ थे ना भैया, 0542-222-1050 और 222-1052। और किसान भाई जरूर अपने पेड़ संबंधी कोनो भी जानकारी अगर लेवल चाहिए तो जरूर फोन करके सुन सके ना।
2: तो भैया ये तो होगल जानकारी के बाद कल हेलो फोनिंग कृषि जगत का कार्यक्रम का। लेकिन भैया हो, अब देखा मौसम चला था बरसात का।
1: बिल्कुल चला था।
2: तो भैया इमन बड़ा बच बचा के रहक हुई और हमेशा देखा जब भी निकला तो छाता वाता ले ले और सांझी के रहे तो गोजी डंडा ले ताकि ठोक ठका के रहे ताकि कोई जानवर ना आवे। और देखा हो बात
1: बता एक चीज जानत हुआ।
2: हाँ भैया,
1: जो छाता गोजी के बात कैला है ना, जब खेते दाने निकले ना तो एक ठे लाइट मतलब टार्चो ले,
2: हाँ, टार्चो ले ले
1: भाई, उसे तीसरा जलावत रही देखत रही तो उसे सतर्क हो जाई। जे भैया समय तब चले के बेला भी हो गई है तो अब पंचन के बोलल जाए,
2: पंचो राम राम।

0: भेजने दे जरा। जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी। मन का रेडियो बजने दे
1: जरा। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18:25 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें। कनेक्ट बना रहा।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़।

0: रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में प्रदेश के 12 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1,10,00,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1,200 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से उनके अभिभावकों के खाते में करीब 1,320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण किया। इस अवसर पर 1,00,000 शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU कर हर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है।
1: हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10,00,000 का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
0: मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
0: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं और 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है, जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट को इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम शुरू किया गया है। श्री योगी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश भी सहभागी बन रहा है।
3: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले की जांच

0: रही। पुलिस टीम ने आज तीन आरोपियों अनुकल मिश्रा, लोकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पहुंची। इससे पहले रिमांड पर लिए गए आरोपी अविनाश शुक्ल से पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर जांच टीम तीनों आरोपियों से बयानों का मिलान करवा रही है। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से आज कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आगरा के पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की। लखनऊ में उनके आवास पर 2 दिन चली छापेमारी में लगभग 1,62,00,000 रुपए कैश, करीब 20 करोड़ रुपए के जेवरात और 13 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1,246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने छात्रों से अपने ज्ञान, प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल विकसित भारत के निर्माण के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाषा विश्वविद्यालय में अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी कई भाषाओं के कोर्स की शुरुआत होने जा रही है, जो यहां के विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों से जोड़ेंगे।
1: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधि भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
0: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57,62,00,000 पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
2: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
0: राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य जनपदों में आज हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। पीलीभीत में कल रात से हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात।

खाद महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIRF पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

मेरा नाम जोकर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत फिल्म अनाड़ी से, आवाज एक बार फिर से मुकेश की।

उपकार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। कमर जलालाबादी के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत, आवाज़ एक बार फिर से मुकेश की।

साहिर लुधियानवी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे थे गजल फिल्म का ये गीत, और यही गीत श्रोताओं हमारे कार्यक्रम का आखिरी गीत था। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की हमारी कलाकार हैं डॉक्टर रागिनी सरना। सबसे पहले आइए सुनते हैं इनकी आवाज में मीराबाई की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं डॉक्टर रागिनी सरना के गाए गीत। आइए अब सुनते हैं इन्हीं की आवाज में हरिवंश राय बच्चन की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रागिनी सरना के गाए गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम।

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी।

आई मिलन के बेला। इस फिल्म का गीत सुन रहे थे आप लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म पत्थर के सनम से। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में आप सुन रहे थे पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत। और अब लीजिए सुनिए हरजाई फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना निदा फाजली का है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

हरजाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर का गाया हुआ। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसमाधुरी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म हमराज से। आवाजें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और तर्ज बनाई है रवि ने।

हमराज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म कुदरत से, आवाज़ किशोर कुमार की।

किशोर कुमार का गाया आप सुन रहे थे कुदरत फिल्म का गीत, और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया वापस फिल्म का ये गीत। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए फिल्म वापस के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री

0: क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता उब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या

0: 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स

0: 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है। जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by

0: इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: आज मेलबोर्न की पूरी फजा जोशो खरोश से भर गई जब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में जमा हुई। इस पुरवकार तकरीब में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें मौसीकी और रक्स के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम के आगाज से कबल वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के अफराद से मुख्तसर मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगू भी की। तकरीब का आगाज एक मुनफरिद और अलामती मौसीकी से हुआ। इसके बाद मेलबोर्न में मुकीम मारूफ कथक डांसर संचिता एब्रोल ने दिलकश कथक रक्स पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब का अख्ताम ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा के 10 रुकनी ग्रुप की शानदार मौसीकी से हुआ, जिसने एआर रहमान के मारूफ नगमे माँ तुझे सलाम को शानदार अंदाज में पेश किया, जिससे वहां मौजूद तमाम लोग जज्बात से सरशार हो गए। मेलबोर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
0: अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत करेंगे। वो भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओज के फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारियों के इज्तम से खिताब करेंगे। इससे कबल दिन में वजीर आजम मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। दोनों रहनुमा नवी सदी के मंदिर गए, जहां वजीर आजम मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के इहाते में एक मुश्तरक प्रेस बयान में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो ने मंदिर इहाते के तहफ्फुज़ और अहिया में भारत की मदद के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम मोदी ने अपने दौरे को इंतहाई रूहानी और यादगार तजुर्बा करार दिया।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: भारत और रूस ने आज अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा ब्रिक्स ईएजी और शंघाई ताउन तंजीम समेत मुख्तलिफ कसीर जहती फोरम्स पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इरादा किया। वजारत खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक भारत रूस मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज और रूस के नायब वजीर खारजा दिमित्री ल्यूबिंस्की ने की। दोनों ममालिक ने हर किस्म की दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों, खासतौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने दहशतगर्दों, दहशतगर्द तंजीमों, उनके दरपर्दा ग्रुपों और नेटवर्क्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर दिया। सरफैन ने इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर अपने ख्यालात का तबादला किया और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल जैसे चैलेंजों से निमटने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कुवैत के वली अहद शेख सबह अल खालिद अल हम्द अस सबह से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से वली अहद को नेक तमन्नाएं पहुंचाई। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और कुवैत के दरमियान दो तरफा तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए वली अहद के अज़्म को सराहा। उन्होंने खलीजी खित्ते के ताजा हालात वाकयात से आगाह करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। दिफाई तहकीक तरक्की के इदारे डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर में वाके मरबूत आजमाइशी रेंज से तवील फासले के गाइडेड रॉकेट पिनाका का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा कि रॉकेट का कामयाब तजुर्बा सारिफ की जानिब से मुकर्रर करदा 60 किलोमीटर की कम अज कम रेंज पर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब आजमाइश पर डीआरडीओ, भारतीय फौज और दिफाई पैदावारी सनद को मुबारकबाद दी। उन्होंने इसे घरेलू सतह पर तवील

0: काफिले तक मार करने वाले गाइडेड रॉकेटों के डिजाइन और तैयारी की सलाहियत में एक अहम संग मील करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हालिया दिनों में मुल्क के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके बायस बारिश की कमी वाले अजला की तादाद 262 से कम होकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में एलनीनो के मुमकिन असरात पर मुनक़िदा आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि जून में 33% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई थी, ताहम जुलाई में मानसून की सूरत हाल बेहतर हुई है और मानसून की मजमुई बारिश में कमी घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुलाई में मजीद बारिश होगी, जिससे खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि अब तक 350 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर खरीफ फसल की बुआई मुकम्मल हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 91 लाख हेक्टेयर कम है। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों को मशवरा दिया कि वो बारिश में ताखीर के असरात कम करने के लिए कम मुद्दत में तैयार होने वाली और कम पानी वाली फसलों जैसे मकई, बाजरा और मूंग की काश्त करें। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने शदीद बारिश, सैलाब जैसी सूरत हाल और चट्टानों के टुकड़े गिरने से मुतासिरा मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला से आज बातचीत की और उन्हें मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जनाब शाह ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और केरलम के वजीर आला वी डी सतीशन से बात की। इस दौरान भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के वसी और मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि शिमाली बुहरे अरब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बकिया हिस्सों की जानिब आइंदा 2 दिन से 3 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने की खातिर मौसम साजगार है। आईएमडी ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आइंदा 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली एनसीआर में आज कुछ बारिश हुई, जिससे गर्मी और हब्स के बाद लोगों को राहत मिली। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस एमके सेकंड के डिजाइन के मरहले को कामयाब के साथ मुकम्मल कर लिया करने पर कौमी एरोस्पेस लेबोरेटरीज को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब नायडू ने कहा कि सारस वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन से मुताबकत रखते हुए अंदरूनी मुल्क डिजाइन करदा मुल्क का पहला हल्का ट्रांसपोर्ट तैयारा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये घरेलू सतह पर तैयारे बनाने के इस संग मील से उड़ान नजरिए को मजीद तकवीत हासिल होगी, जिसका मकसद मेड इन इंडिया तैयारों में दूर दराज और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों को मजबूत करना है। आज शाम कौमी राजधानी के रोहिणी सेक्टर 16 के इलाके में एक इमारत ढह गई। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक मलबे के नीचे 4 से 5 अफराद के दबे होने का खदशा है और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी बचाव और राहत कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने कहा है कि आज सुपहर 4:20 पर उन्हें इस हादसे की एक कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद जाए हादसे पर 6 गाड़ियां रवाना की गई। इब्तदाई मालूम के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत के कुछ फ्लैट्स में तामीर नौ का काम जारी था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए मुंजमद कर दिए हैं। ये मामला गैर ईमानदाराना माली लेन देन और रुकूमात के मुश्तबा इस्तेमाल से मुतालिक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने काले धन को जायज बनाने से मुतालिक कानून 2002 के जाब्तों के तहत कल कोलकाता में 5 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी थी। ये तलाशी की कार्रवाई शहरी हवाबाजी के शोबे में काम करने वाली एक निजी कंपनी से वाबस्ता मकामात पर अंजाम दी गई थी। तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ

अप्रैल 2023 से जून 2026 के दरमियान एआईटीसी के बैंक खातों से निजी कंपनी और इससे वाबस्ता इदारे को तकरीबन 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। घरेलू हिस्से बाजार में आज जबरदस्त फरोख्त हुई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। खाम तेल की कीमतों में इजाफा, कमजोर आलमी रुझानात और एक बार फिर पैदा होने वाली जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का बाजार पर काफी असर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी है। अंकारा में मुनाकिदा नेटो समिट के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ मुजाकिरात में मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहते। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नुमाइंदे मुजाकिरात जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें इन मुजाकिरात के कामयाब होने के इम्कानात पर शुबा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ने ईरान के खिलाफ एक नई फौजी कार्रवाई करते हुए 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीका का कहना है कि ये हमले आबनाए हुर्मुज में तजारती जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में जदीद और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए, जिनका मकसद बैन अल-अक़वामी बहरी तिजारत को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना था। ईरानी फौज के मुताबिक हॉर्मुज़गान और महशार सूबों में साहिली फौजी अड्डों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रूस के रात भर जारी हमलों में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक शख्स की मौत राजधानी कीव में हुई। खारकीव में 2 अफराद हलाक जबकि 20 दीगर जख्मी हुए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तुयुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 12वीं सीड की खिलाड़ी मार्ता कोस्तुयुक ने आज सेंटर कोर्ट में इटली की जैस्मिन पाउलिनी को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। इसी तरह 9वीं सीड की खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा ने बेल्जियम की खिलाड़ी एलिस मार्टिन्स को 6-3, 7-5 से हराया और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3री भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबोर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनजाद दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इरादा किया। वो दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइशी परवाज की। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने इत्मीनान जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंजुमन।

मनुष्य के जीवन में सबसे अनमोल होते हैं। मनुष्य के जीवन में रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। इन्हीं रिश्तों से जीवन में अपनापन, विश्वास और प्रेम का संचार होता है। लेकिन जब यही विश्वास आहत होता है तो मन की पीड़ा शब्दों का रूप लेकर गजल बन जाती है।

रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वे केवल शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से जीते हैं। जब कोई अपने दिल में किसी को इतनी गहराई से बसा ले कि हर धड़कन उसी के नाम हो जाए, तब प्रेम इजहार का मोहताज नहीं रहता, वो जीवन का स्थायी भाव बन जाता है।

0: मिताली सिंह के गाए इस गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम अंजुमन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम के अंतर्गत पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी वादन।
1: आकाशवाणी है, आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख

0: संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकरलाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक व्हाइल ही वॉज स्टिल अ चाइल्ड। इंस्पायर्ड बाय द साउंड्स दैट इमेनेटेड फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ बैम्बू, ही स्टार्टेड लर्निंग द फ्लूट फ्रॉम श्री प्रकाश एन सक्सेना एट गंधर्व महाविद्यालय न्यू दिल्ली। लेटर ही ऑल्सो लर्नड द न्यूएंसेस ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम पंडित विनय चंद्र मौद्गल्य। द फ्लूट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैलाश चंद शर्मा लाइफ एंड ही प्लेड ऑन पार्टिसिपेटिंग इन एंड विनिंग प्राइजेस एट इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल म्यूजिक कॉम्पिटिशंस। सिंस देन पंडित कैलाश चंद शर्मा हैज कम अ लॉन्ग वे प्रोफेशनली, हैविंग परफॉर्म्ड अ ग्रेट डील इन इंडिया एंड मेनी कंट्रीज अब्रॉड। ही हैज वर्कड विद द ग्रेट मास्ट्रो पंडित रविशंकर on many occasions and was selected to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theatre personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music festivals that are held in the capital, such as Vishnu Digambar Jayanti, शंकरलाल म्यूजिक फेस्टिवल, सहर, द नैना देवी मेमोरियल फेस्टिवल, टू नेम अ फ्यू।
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। कैलाश चंद शर्मा बिगिंस हिज फ्लूट रिसाइटल with Rag Malgunji. Vilambit composition is set to Ek Taal and Drut composition is set to Teen Taal.

0: ये था पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के अंतर्गत प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी वादन, माफ कीजिएगा, पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी वादन। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी

निंदा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्टा कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्टा कोस्त्यूक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।